सुप्रभात एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 5, तदनुसार 25 मई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Nina Arkel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
4: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. I just want to say a very big thank you to everybody that's morning here and this evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country.
3: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held in Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony, to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Bhushan and 113 Shri Padma Shri Awards. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. In West Bengal, BJP candidate Debangshu Panda has won the Falta Assembly seat by a margin of over 1 lakh votes. Mr. Panda defeated his nearest rival and CPIM's candidate Shambhunath Kurmi, who secured with 40,645 votes. The re-poll in Falta was held in all 285 booths on May 21 under the security blanket of around 35 companies of Central Forces. Prime Minister Narendra Modi has congratulated BJP candidate Debangshu Panda for winning the Falta Assembly re-poll with a record margin. In a social media post, the Prime Minister said that the victory indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards BJP. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examination by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The National Testing Agency, NTA, has postponed the Common University Entrance Test Undergraduate CUET 2026 examinations scheduled for 28th of this month. And that is the end of this news bulletin.

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहरी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये चैवसा केंद्र है और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए आपको बता दें आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुबह 7 समय होगा हमारा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का, जिसमें आप कुछ फिल्मी गीतों के अलावा कुछ जानकारी की बात जानेंगे। प्रातः 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। लोकगीत का कार्यक्रम होगा माटी की महक। सुबह 9 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विविधा। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन और सुबह 10 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकेंगे। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा के बारे में।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्यामाश्री दास के स्वर में ये गीत।

इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है।

कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। तो श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा को लेकर, जिसमें हम सुनेंगे कुछ बॉलीवुड फिल्मी गीत और कुछ उपयोगी सुझाव गर्मी से बचने के। तो श्रोताओं, इस समय हमारे देश भर में गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे मौसम में ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य

आप विशेष ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, हल्का भोजन करें और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। और श्रोताओं, सुनते हैं आज के सुविचार को। जीवन में धैर्य और पानी, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं, क्योंकि धैर्य जीवन को संभालता है और पानी शरीर को। तो इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम।

दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत मधुर संगीत से हो जाए तो पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सलिल चौधरी के धुन पर फिल्म मधुमति का ये प्यारा संगीत। और दोस्तों, गर्मी के मौसम में बाहर निकलते समय छाता या टोपी जरूर रखें और खाली पेट धूप में निकलने से बचें।

फिल्म रोजा का ये गीत आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में एआर रहमान के धुन पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों का शानदार सफ़र हमारे जोहार चाईबासा कार्यक्रम में। अभी आपने सुना फिल्म आज और कल का ये गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया, रवि के धुन पर। दोस्तों, शरीर को ठंडा रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन जरूर करें। और आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों, कभी कभी बारिश के गीत गर्मी में सुनना मन को ठंडक दे जाता है, और इसी ठंडक के साथ आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मंजिल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार का गाया आर डी बर्मन के धुन पर। संगीत हमारे दिल को सुकून देता है और सुकून भरा मन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपको बहुत अधिक थकान, चक्कर या सिर दर्द महसूस हो रहा है तो आप तुरंत छांव में आराम करें और

दोस्तों, सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ठंडक है जो जीवन की हर गर्मी को कम कर देती है। और इसी एहसास के साथ सुनिए हमारा ये अगला गीत।

0: किशोर कुमार का गाया फिल्म सफ़र का ये गीत आपने सुना। इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन। और अब दोस्तों सुनते हैं ये अपील।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा गया। हम बोले रुड़ तबन में अलग परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर है को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्तो था तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए है।
6: मुकुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
7: अन्य मुकुम दो मुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं
0: और इस अपील के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से जोहार चाईबासा का कार्यक्रम और आपको सुनवा रहे हैं कुछ प्यारे गीत। दोस्तों हम गर्मी से कुछ बचाव के टिप्स आपको दे देते हैं। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं और सूती कपड़े पहनने का प्रयास करें। दोपहर की तेज़ धूप से बचें और अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आशा भोसले का गाया फिल्म आदमी और इंसान का ये गीत रवि के धुन पर। दोस्तों, कभी कभी संगीत दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाता है और सुकून भरा मन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और इसी एहसास को जारी रखते हुए सुनिए हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म ब्लैकमेल का किशोर कुमार का गाया ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

दोस्तों, ये पुराने गीतों की मिठास हमेशा हमारे दिल को सुकून देती है। अभी आपने सुना फिल्म ममता का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत रोशनलाल का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से जोहार चायबासा कार्यक्रम में ये फिल्म गीत। दोस्तों, गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अपने व्यवहार में शीतलता अवश्य बनाए रखें। और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का ये गीत, और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को मजरूह सुल्तानपुरी के बोल उषा खन्ना के धुन थे और फिल्म का नाम था दिल दे के देखो। और अब श्रोताओं, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म आक्रमण का ये गीत। तो दोस्तों, इसी प्रकार चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल का आनंद लेते रहिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ हमारे जोहार चाय बसा का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।

0: पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
6: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं

0: चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा पलामू चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। और 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड, देव मीणा कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है।

0: 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: राज्य के 47 थानों में आज दामोदर महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत लोहरदगा स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी में दामोदर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। बकरीद को लेकर सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसे लेकर रामगढ़ पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और लोगों से भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। इधर रांची में बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महावीर मंडल, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से देशभर में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा कर दिया गया है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत 105.24 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल की कीमत 100.37 रुपये हो गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7.35 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 7.53 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुमका के मसानजोर डैम में कल शाम नौका विहार के दौरान एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। मसानजोर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के अनुसार घटना में 4 पर्यटक तैरकर सुरक्षित किनारे आ गए, जबकि एक पर्यटक गहरे पानी में डूब गया। इधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कल रात स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की गई। इस दौरान अपराधियों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिमडेगा पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी में शामिल था और ओडिशा से सिमडेगा होकर पशुओं से लदे वाहनों को पार कराने का काम करता था।
2: गौवंशीय पशुओं की तस्करी का संगठित ग्रोह चला रहे थे, ओडिशा से सभी को मैनेज करते थे। उसके बाद सिमडेगा की जिम्मेदारी इन्होंने अन्य लोगों का नाम स्पष्ट किया है। उसके बाद कुछ लोगों की जिम्मेदारी खुट्टी के लोगों की थी। उसके बाद रांची होते हुए ये अवैध गौवंशीय पशुओं को ओडिशा भेजने का काम करते थे। अब तक इन पे ओडिशा और सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल 8 कांड दर्ज हैं और अन्य भी अनुसंधान जारी है।
1: राज्य भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में भी पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के कारण पिछले 3 दिनों में जमशेदपुर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र के न्यू केबल टाउन बस्ती का है, जहां बिरला मंदिर के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जांचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रतियोगिता में पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ऊंची कूद और हर्डल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ क्वालिफिकेशन हासिल कर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। एक रिपोर्ट।

0: 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ा धमाका विश्व के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
2: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज से की जाने वाली समीक्षा बैठकों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज से 11 जून तक सीएम करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य के सभी हाईस्कूल होंगे प्लस टू में अपग्रेड। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान ने राज्य में बढ़ती गर्मी के प्रकोप को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा पलामू चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन और प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड, देव मीणा कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: ये आकाशवाणी रांची।
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में उरांव लोकगीत। कलाकार हैं जगन्नाथ उरांव और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगन्नाथ उरांव और साथियों से उरांव लोकगीत। इसी के साथ हमारा आज का माटी की महक का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम चर्चा करेंगे विश्व थायराइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस के बारे में।

श्रोताओं, आज 25 मई है और 25 मई के दिन हम मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। श्रोताओं, हमारे मानव शरीर में अनेक अंगों और ग्रंथियों के समन्वयन के कारण हमारा स्वस्थ बना रहता है। शरीर की प्रत्येक ग्रंथि का एक अप

0: ना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह छोटी सी तितली आकार की ग्रंथि गले के सामने स्थित होती है, किंतु इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर की ऊर्जा, विकास, वजन, मानसिक स्थिति, हृदय गति और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में इस थायराइड ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के समय में थायराइड संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अनियमित जीवन शैली, तनाव, असंतुलित भोजन और जागरूकता की कमी के कारण लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को थायराइड रोगों के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देने का माध्यम है। सही समय पर जांच और उपचार से थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का निर्णय यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन द्वारा लिया गया था। इसका उद्देश्य था दुनिया भर में थायराइड रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना। 25 मई की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद विभिन्न देशों की स्वास्थ्य संस्थाओं और चिकित्सा संगठनों ने भी इस अभियान का समर्थन किया। आज विश्व भर में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस दिन अनेक जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि थायराइड है क्या। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले के सामने होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है और यह मुख्य रूप से दो हार्मोन से बनती है, T3 और T4। ये हार्मोन शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे भोजन को ऊर्जा में बदलना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन नियंत्रित करना, मस्तिष्क और शरीर के विकास में सहायता करना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। यदि इन हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति को थायराइड रोग हो जाता है। थायराइड के रोग के प्रकार भी हैं श्रोताओं, हाइपोथायराइडिज्म। इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बनाई जाती है। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण हैं वजन बढ़ना, थकान और कमजोरी, बाल झड़ना, ठंड अधिक लगना, त्वचा का सूखापन, अवसाद और तनाव। हाइपरथायरॉइडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन बनाने लगती है, जिसके लक्षण है तेजी से वजन घटना, घबराहट लगना, बहुत अधिक पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ कांपना, नींद ना आना, ये सब इसके लक्षण हैं। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे गॉयटर कहते हैं। इसमें गले में सूजन दिखाई देती है। थायराइड कैंसर, यह अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, लेकिन समय पर जांच और उपचार बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लक्षण होते हैं गले में गांठ पड़ जाना, आवाज बैठना, निगलने में परेशानी होना और लगातार खांसी आना। श्रोताओं, थायराइड होने के कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी होना। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से रोग हो सकता है। यदि परिवार में किसी को थायराइड है तो अन्य सदस्यों में भी इसकी संभावना बन जाती है। अत्यधिक मानसिक तनाव भी हार्मोन संतुलन को प्रभावित करता है श्रोताओं। जंक फूड और पोषण की कमी से शरीर कमजोर होता है। महिलाओं में गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। महिलाओं में थायराइड रोग पुरुषों की तुलना में अधिक पाया जाता है, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के बाद या रजोनिवृत्ति के समय। थायराइड असंतुलन से महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, बांझपन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि बच्चों में थायराइड की समस्या समय पर न पहचानी जाए तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, पढ़ाई में कमजोरी हो सकती है, विकास रुक सकता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है और वजन बढ़ता जाता है। इसलिए बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक होती है। थायराइड रोग की पहचान के लिए कई प्रकार की जांच की जाती है श्रोताओं, जैसे TSH टेस्ट, यह सबसे सामान्य जांच है। T3 और T4 टेस्ट, इससे हार्मोन का स्तर का पता चलता है। अल्ट्रासाउंड द्वारा थायराइड ग्रंथि की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। बायोप्सी, यदि गांठ हो तो कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। और अब श्रोताओं हम बात करते हैं कि थायराइड से बचाव के क्या उपाय हैं। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना होगा, आयोडीन युक्त नमक और पौष्टिक भोजन का सेवन करना होगा, हमें नियमित व्यायाम करनी होगी। योग और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तनाव कम लेना होगा, ध्यान और मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही लाभकारी है श्रोताओं। इसके और हमें नियमित जांच भी करवानी होगी, समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन बढ़ा सकती है। थायराइड रोग में इसके क्या हम भोजन कर सकते हैं, आयोडीन युक्त पदार्थ जैसे कि समुद्री मछली, अंडा, दूध, दही, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, ब्रोकली, फल, केला, सेब, संतरा, ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट का हम सेवन कर सकते हैं। हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि अधिक जंक फूड से, धूम्रपान से, शराब से, अत्यधिक मीठा से, तनावपूर्ण जीवन शैली से। योग थायराइड नियंत्रक में सहायक माना जाता है श्रोताओं, इसलिए हमें कुछ लाभकारी योगासन भी करनी चाहिए, जैसे कि सर्वांगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, उत्तरासन। इन योगों से गले के क्षेत्र में रक्त संचार बेहतर होता है। विश्व थायराइड दिवस केवल एक स्वास्थ्य दिवस ही नहीं बल्कि यह लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है श्रोताओं। इसका महत्व है कि इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी, समय पर जांच के लिए लोग प्रेरित होंगे, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और गलत धारणाओं को दूर किया जा सकेगा। इस दिवस पर दुनिया भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य शरीर शिविर, निःशुल्क जांच, जागरूकता शैली सेमिनार और व्याख्यान, सोशल मीडिया अभियान। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा लोगों को थायराइड के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे देश भारत में बड़ी संख्या में लोग थायराइड रोग से प्रभावित हैं, विशेषकर महिलाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता की कमी और आयोडीन की कमी इसके प्रमुख कारण बने हुए हैं। भारत सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि काफ़ी सुधार पाया गया है। थायराइड का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जैसे कि हम अवसाद, चिड़चिड़ापन, चिंता और ध्यान केंद्रित करने में हमें कठिनाई होती है। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है श्रोताओं। थायराइड रोग से जुड़े कुछ भ्रम भी हैं, जैसे कि थायराइड केवल महिलाओं को होता है, लेकिन सत्य बात यह है कि यह पुरुषों और बच्चों को भी हो सकता है। थायराइड का इलाज संभव नहीं, यह सत्य नहीं है। सही दवा और जीवन शैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। केवल मोटे लोगों को थायराइड होता है, श्रोताओं पतले लोगों को भी थायराइड हो सकता है। यदि व्यक्ति नियमित दिनचर्या अपनाए तो थायराइड जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए हमें सही आदतें डालनी होगी, समय पर भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, पर्याप्त पानी पीना होगा, तनाव मुक्त जीवन जीना होगा और नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी। विश्व थायराइड दिवस हमें संदेश देता है कि छोटी छोटी सी लापरवाही भी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। थायराइड रोग आज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और समय पर उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और समय समय पर जांच करवाकर हम थायराइड रोग से बच सकते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है श्रोताओं। इसलिए हमें स्वयं भी जागरूक रहना चाहिए और दूसरों को भी थायराइड के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके। और अब सुनते हैं ये अपील।
1: हिंसा से सनी राहें अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जा है।
6: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भुरुपा सिना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिका
7: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं पुरी उड़ी ने बागिया तो कि मैं दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
11: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
12: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: और अब इस अंतराल के बाद श्रोताओं हाजिर हैं फिर से अगले चर्चा पर. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा, और कार्यक्रम विविधा में श्रोताओं हम आज अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस पर. श्रोताओं, बच्चे किसी भी देश और समाज के भविष्य होते हैं. उनका सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रत्येक परिवार और राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है. लेकिन आज के समय में बच्चों के लापता होने की घटनाएं विश्व भर में चिंता बन चुकी है. हर वर्ष हजारों बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं. कुछ बच्चे मानव तस्करी, बाल श्रम, अपहरण, अपराध, घरेलू हिंसा या अन्य सामाजिक समस्याओं के कारण लापता हो जाते हैं. इन गंभीर परिस्थितियों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस मनाया जाता है. यह दिवस न केवल लापता बच्चों को खोजने के प्रयासों को मजबूत करता है, बल्कि समाज को बच्चों के सुरक्षा के प्रति जागरूक बनने का भी संदेश देता है. यह दिन उन परिवारों के दर्द और संघर्ष को भी याद दिलाता है जिनके बच्चे किसी कारणवश उनसे दूर हो गए हैं. साथ ही यह सरकारों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है. अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई. 1979 में अमेरिका में 6 वर्षीय बालक इटन पैट्च के अचानक लापता होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया. 25 मई 1979 को एटन पैट्च नामक न्यूयॉर्क में स्कूल जाते समय यह बच्चा गायब हो गया था. लंबे समय तक खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका. इस घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में व्यापक आंदोलन शुरू किया गया. वर्ष 1983 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 25 मई को नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे घोषित किया. बाद में यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और इसे कई देशों ने अपनाया. आज दुनिया के अनेक देशों में यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना. लापता बच्चों को खोजने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है. बाल सुरक्षा के प्रति अपने समाज को जागरूक किया जाता है. मानव तस्करी और बाल अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है. परिवारों को सहयोग और सहायता प्रदान किया जाता है. बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है. कानून व्यवस्था को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है. श्रोताओं, यह दिवस समाज को यह संदेश देता है कि प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. बच्चों के लापता होने के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण होते हैं. कुछ अपराधी फिरौती, बदले या अन्य आपराधिक उद्देश्यों से बच्चों का अपहरण कर लेते हैं. मानव तस्करी बच्चों के लापता होने का एक बहुत बड़ा कारण है. बच्चों को मजदूरी, भीख मंगवाने तथा अन्य अवैध कार्यों में लगाने के उद्देश्य से मानव तस्करी की जाती है. घर में झगड़े, मारपीट और तनाव के कारण कई बच्चे घर छोड़ देते हैं. गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण बच्चे काम की तलाश में घर से दूर चले जाते हैं. इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चे साइबर अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं. कई बार बाढ़, भूकंप और युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं. आज यह समस्या केवल किसी देश तक ही सीमित नहीं है. दुनिया के लगभग सभी देशों में बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आती है. इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं श्रोताओं, जैसे कि सीमा पार मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, अवैध गोद लेना, युद्ध और विस्थापन। यूनिसेफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारत में भी हर वर्ष बड़ी संख्या में बच्चे लापता होते हैं। कई बच्चे तो समय पर मिल जाते हैं, लेकिन अनेक मामलों में खोजबीन लंबी रहती है, और इसके प्रमुख कारण हैं गरीबी, बाल श्रम, मानव तस्करी, घरेलू समस्याएं और बच्चों का घर से भाग जाना। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। आज बच्चों की सुरक्षा के लिए कई सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, यह बच्चों की सहायता के लिए 24 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन सेवा है। पुलिस अभियान, विभिन्न राज्यों की पुलिस समय समय पर विशेष अभियान चलाती है। स्कूलों और समाज में सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। बच्चों की सुरक्षा में परिवार की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। परिवार को अपने बच्चों पर ध्यान देनी चाहिए, उन्हें सुरक्षित व्यवहार सिखाना चाहिए, अनजान लोगों से सावधान रहने की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करनी चाहिए और उनके गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। यदि बच्चा मानसिक तनाव में हो तो परिवार को उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। विद्यालय बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। आज स्कूलों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों को सुरक्षा की शिक्षा दें, स्कूल परिसर को सुरक्षित बनाएं, बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान रखें और अभिभावकों से नियमित संपर्क बनाए रखें। आज डिजिटल दुनिया में बच्चों के लिए कई चुनौतियां लेकर आई है। ऑनलाइन खतरे बढ़े हुए हैं, फर्जी पहचान, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, गेमिंग की लत, ये सब आज बहुत ही खतरा पैदा कर रहे हैं बच्चों के लापता होने में। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सिखानी होगी, बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर हमें नज़र रखनी होगी। हमारे समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए श्रोताओं। तो हम बात कर रहे थे आज अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस के बारे में। बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल जीवन जीने का अधिकार रखता है। लापता बच्चों की समस्या केवल हमारे एक परिवार की ही समस्या नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज की समस्या है, और हमें सभी को मिलकर जागरूकता फैलानी चाहिए और इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तो काफ़ी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस के बारे में। तो इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। तो सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुराधा और अमित कुमार का गाया, सैयद कादरी का लिखा, अनु मल्लिक के धुन पर फिल्म कलयुग का ये गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना परदेश फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा, नदीम सरवन के धुन पर कुमार शानू की आवाज में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंजन में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में बॉलीवुड फिल्मी गीत। तो सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म मन का ये गीत। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को नदीम श्रवण के धुन पर फिल्म राजा का ये गीत। और अब श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नलिन दवे और अल्का याग्निक का गाया फिल्म प्रेम का ये गीत। इसी के साथ हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक है NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक

0: फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।
2: हाँ,

0: कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बच्चों, बच्चों, बच्चों,
6: फटने जाओ,
5: सभी जाओ, पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
6: धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा
2: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
8: हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
9: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर,
8: क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
8: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
7: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
9: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
7: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
10: जी जनाब।
11: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
9: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
9: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
9: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
9: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
9: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना
8: बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक बार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

दोस्तों कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। जीवन की सादगी, उच्च और उन्नतशील विचार हमारे जीवन को प्रेरणादायी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों में इन गुणों का समावेश था और तभी आज हम यहाँ हैं, हमारा समाज यहाँ है। लेकिन ऐसा लगता है कि विगत कुछ दशकों में ऐसे विचार गौण हो चुके हैं। लोगों का जीवन तो भौतिक सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें वास्तविक सुखों की अनुभव का बहुत ही कम श्रेय है। दोस्तों विचार हमारे जीवन का वो पहलू है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे विचारों के साथ हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, वैसी ही तय होगी हमारी मंजिलें। अगर हम एक नज़र गुजरे ज़माने पर डालेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि परोपकार की भावना से, विचारों से हमने अब तक के रास्तों को तय किया है। तो ऐसे विचारों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है और ऐसे ही विचारों को अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत है, जिनसे हमारा जीवन तो सरल हो, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के रास्ते भी सुगम हो जाएं।

0: सीआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जोहार राज्य में एक बार आप सब का फिर से स्वागत है साथियों। बातें मौसम की, इन दिनों हम तेज गर्मी की चपेट में है, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना है। राज्य मौसम केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। 25 और 27 मई को गरज वाले बादल बनने की संभावना है, जबकि 28 मई तक तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। 28 मई को रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों पलामू प्रमंडल में सोमवार से लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और ऐसे में लोगों को दोपहर के समय सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 मई तक रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 मई को उत्तर पूर्वी जिलों संथाल परगना में फिर से तेज हवा और वज्रपात की आशंका जताई गई है और वहीं 26 और 27 मई को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। और ये भी बता दें कि रविवार को डाल्टेनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ की अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर में 40.5 डिग्री, बोकारो में 42.4 डिग्री और चाईबासा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहरागोड़ा में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो शुष्क बना रहा है।

और जोहरा जी में आइए जानकारी लें। आज 25 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास में दर्ज हैं उनके बारे में। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता पाई थी। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 देश सदस्य देश सहमत हुए थे। 2003 में चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता, आज ही के दिन यानी 25 मई को। 25 मई को ही 2006 में नासा ने GOESN नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 12 देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाउ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित कर दिया। और 2010 में आज ही के दिन भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर ट्रिनिडाड टोबैगो की पहली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थीं।

और साथियों, हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो ये भी बताते चलें कि आज किन का जन्म दिवस है। आज जन्मदिन है प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग देहलवी का, और आज उनका भी जन्मदिन है जिन्हें हम सब रास बिहारी बोस के नाम से जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी जिनका नाम इतिहास में साहस, त्याग और देशभक्ति के साथ लिया जाता है। रास बिहारी का बोस का जन्म आज के दिन 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश में आजाद देखने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। साल 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले की योजना में उनका अहम योगदान माना जाता है। जब अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ गई तो वे जापान चले गए, लेकिन विदेश में रहकर भी उनका संघर्ष नहीं रुका। उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रास बिहारी बोस ने ही आगे चलकर आजाद हिंद फौज की नींव रखी और उसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। उनका ये निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। रास बिहारी बोस का जीवन हमें सिखाता है कि देश से बड़ा कुछ नहीं, और समर्पण और दृढ़ निश्चय से किसी भी मुश्किलों से लड़ा जा सकता है। तो ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन।

और आइए अब भी जानकारी लेते हैं कि आज किनका किनका निधन हुआ था। 2020 में बलबीर सिंह, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, इनका निधन आज ही के दिन यानी 25 मई को हुआ था। 2012 में भगवत रावत, प्रसिद्ध कवि और निबंधकार, इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 2011 में भारतीय समाज सेवी रजनीकांत अरोल का निधन आज ही के दिन हुआ था। और बंगला अभिनेता तपन चट्टोपाध्याय का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1978 में बीरेन मित्रा, भारतीय राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन भी आज के दिन ही हुआ था। 1974 में कृष्ण चंद्र गजपति, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1933 में बास्तियो पांडे, त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन 25 मई यानी आज के दिन ही हुआ था। 1924 में सर आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। और ये भी बताते चलें कि 2005 में हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त का निधन आज के दिन ही हुआ था।

और फिल्म संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी को तो हम सभी जानते हैं। इनके संगीत से सजी कई फिल्मी गाने हमने सुने हैं, उन्हीं में से एक लक्ष्मीकांत का निधन भी आज ही के दिन हुआ था।

और इतिहास के पन्नों को समेटते हैं और बातें करते हैं हमारे स्वास्थ्य की। दोस्तों, इन दिनों एलर्जी का प्रभाव बहुत देखा जा रहा है। इससे बचने के कई तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका है साफ सफाई बदलने का। नियमित साफ सफाई पर हमें ध्यान देना होगा। लंबे समय तक कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी होगी। और जब हम झाड़ू लगाते हैं तब धूल के कण जमीन से उड़कर दीवारों, बेड या फर्नीचर पर जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब बहुत कचरा न हो तो झाड़ू का इस्तेमाल न करें, सिर्फ पोछा लगाएं। वैक्यूम क्लीनर से सफाई बेहतर विकल्प है। सप्ताह में एक बार दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर को साफ जरूर करें। चादर और तकियों को एक सप्ताह में जरूर बदल दें। कालीन या कारपेट भी समय समय पर साफ करते रहें। ये धूल कण के जमा होने का अनुकूल जगह है। साथ ही ये भी बता दें कि बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर नहीं लाएं, और अगर लाना जरूरी हो तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करके लाएं। और हम अपने खान पान से भी एलर्जी से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को लेना होगा जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ग्रीन टी, हल्दी, शहद, इलायची, सूखे मेवे, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, दही और चिकन, मछली, इन सबों का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल तो हमें हमेशा करना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को तो घटाते ही हैं, साथ साथ एलर्जी को बहुत बढ़ाते हैं। और इनसे बचाव का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम एलर्जन से बचें। पहले एलर्जी का स्थायी उपचार नहीं था, लेकिन अब एलोपैथिक में उपचार उपलब्ध है, जिससे एलर्जी को जड़ से हम दूर कर सकते हैं। इसमें एलर्जी की पहचान करने के लिए ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज को किस पदार्थ की एलर्जी है। उसी पदार्थ को प्यूरिफाई करके मरीज को लगातार देते हैं, धीरे धीरे शरीर उस पदार्थ से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसे एलर्जन इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसमें एलर्जेटिक अस्थमा भी ठीक हो जाती है। नियमित गहरे श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। प्राणायाम, कपालभाति और जलनेति भी एलर्जन से बचने का एक अच्छा तरीका है।

और आइए अब हम चलते हैं सैर पे। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे शोजा की। अगर आपको पहाड़ रोमांचित करते हैं और आपको शांति पसंद है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित शोजा गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए एक उपयुक्त जगह है। बहुत ही कम आबादी वाली ये जगह जालोरी दर्रे से ठीक पहले एक छोटे से गांव में है। हरे भरे ढलान वाले पहाड़ों, चारों ओर मीलों तक फैले देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों के अनूठे दृश्य के साथ ये एक लुभावनी जगह है जहाँ की शांति आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ हम क्या क्या देख सकते हैं तो ये भी बता दें, जालोरी दर्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है। यहाँ के आकर्षक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। रघुपुर किला इतिहास के शौकीन है तो जालोरी दर्रे के 3 किलोमीटर दूर इस किले तक का सफर हम आपके रोमांच को बढ़ा सकता है। रघुपुर किले की पैदल यात्रा और कैंपिंग खास लोकप्रिय है तो इसका लुत्फ उठाना नहीं भूलिएगा। यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुंतर है और निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। यहाँ से आप टैक्सी लेकर भी इस जगह पर पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। और ये भी बता दें कि मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक यहाँ जाना सही रहता है। वाटरफॉल पॉइंट से सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, साथ ही पक्षियों की चहचहाहट को भी हम महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ बात ठहरने की है तो हमें होमस्टे और हॉस्टल के विकल्प यहाँ मिल सकते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ही सुदूर जगह है इसलिए होमस्टे में रहने से पहले भोजन के बारे में आप बात जरूर कर लें। वैसे शोजा में भोजन पूरी यात्रा का अनुभव का एक अभिन्न अंग है, इसलिए यहाँ के भोजन का आप स्वाद जरूर लें और एक बार शोजा जरूर घूम आएं।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सबों का स्वागत है। ये पहली फरमाइश भेजी है आप सबों ने बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभानंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म बॉर्डर का ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

और ये अगली फरमाइश भेजी है आप सबों ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेगलदार। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म राजा जानी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, अनुप्रिया, मंटू, मोनू सोनी और बजरंग मेहता, और आप सब हैं बड़ा बॉम्बे सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लेहर से कोमल बेसरा, बासंती, और आप सब हैं नाज मंजिल महसौल से, सीतामढ़ी महसौल से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, हमजा बाबू,

मिलबाबू हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, पच्चू शेख और चीना शेख, आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म शागिर्द का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मेका, बलविंदर विरक, जातेक विरक और मेका विरक, पुराना तालाब डुमराफ से वलीउल्लाह अंसारी और आसमान अजंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोमन और डॉक्टर अदिबा, सारिमपुर बक्सर से राजा एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सबों ने सुना चाहे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म कारवां का ये गाना।

मैं सॉल सीतामढ़ी से नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फराज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नारिया नूर नूरीनाज, क्वात बिहार से नरगिस शफर। आप सबों ने सुना चाहे फिल्म सौदागर का ये गाना, आवाज़ है किशोर कुमार की।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनिए बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, आज की गृहलक्ष्मी नागपुरी भाषा में।

0: कार्यक्रम सुनिए सब श्रोता बहन मन के। सुमन बहन बटले जोहार और वंदा बहन रंगो हो जोहार।
1: जोहार सुमन दी। और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवाइया सब बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और असरा करीला की हमरे का सब बहन मन बढ़िया से होबे।
0: सही कहली। और जब बेस रहब तभी तो हर काम के हमरे बेस से करे पाए, है नी? चाहे खेल कर संबंध में होवे, चाहे घर के सम्राट में होवे, जीवन का हर कदम में आगे बढ़े ले स्वास्थ्य रहे जरूरी है के। देखो हमरे कर देश में महिला फुटबॉल भी बहुत तेजी से उभरते जाते और हाल ही में भारतीय अंडर 17 टीम कर AFC अंडर 17 महिला एशियन कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन और सीनियर महिला टीम कर AFC महिला एशियाई कप में लगातार सफलता से देश में ये खेल कर लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाए है, नहीं?
1: कर ली। देखो पहले कर जमाने में कहल जात रहे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नौ, लेकिन अब ये बात लागू नहीं होवेला। देखो हमरे कर देश जो है खेल बटे भी बहुत आगे बढ़े थे, चाहे क्रिकेट होवे, चाहे फुटबॉल होवे, चाहे बैडमिंटन होवे, चाहे टेनिस होवे। तो अब खेल के खराब बुझे के नखे और लड़का मन कर संगे संगे लड़की मन के भी कर बटे जरूर हमरे मन के आगे बढ़े जरूरी है। काले की देखो क्रिकेट में हमरे मन देख ली कि महिला मन कते बढ़िया प्रदर्शन कर ले।
0: हाँ, और इखन भी बढ़ते हैं
1: क्रिकेटर।
0: सही।
1: टेनिस में सानिया मिर्जा और देव दौड़ में कहो तो उषा पीटी उषा जे रहे बहुत बढ़िया रहे। तो ऐसा मत समझो कि खाली लड़का है मन उकर में बढ़िया होवे, लड़की मन भी आगे बढ़त है। तो देखो फुटबॉल में जे इखन होलक से बहुत बड़ सफलता इंडिया के चाहे भारत के मिल है, इसलिए हमरे का देश में खेल कर लोकप्रियता दिन दिन बढ़ते हैं जाते। और देखो नहीं भारत में जो महिला फुटबॉल का विकास होते वो कई गो कारण से होते, जैसे कि घरेलू जो लीग है विस्तार इंडियन वुमेन्स लीग यानी कि IWL देश भर कर महिला खिलाड़ी मन के पेशेवर स्तर से खेले अपन प्रतिभा दिखाए और आजीविका कमाई करे को शानदार मंच उमन के प्रदान कर रहे।
0: सही।
1: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता तो भारतीय टीम AFC महिला एशियाई कप और एशियन गेम्स जैसन मुख्य आयोजन मन में शानदार प्रदर्शन करके अपन मजबूत स्थिति के उमने दर्ज करा ला।
0: और देखो कि जे महान खिलाड़ी मनक योगदान है उकर में ओइनम बेम बेम देवी जिनके की भारतीय फुटबॉल कर दुर्गा भी कहल जाएला और आशालता देवी जैसन खिलाड़ी मन खेल के नावा ऊंचाई तक पहुंचा लें और युवा मन के भी प्रेरित कर लें। और देखो कि ग्रास रूट स्तर पर सुधार इकर भय है तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बटले लगातार जमीनी स्तर पर प्रतिभा कर खोज और ट्रेनिंग कैंप कर आयोजन से खेल में लड़की मनक भागीदारी भी पढ़ते हैं जाते।
1: एकदम सही कर ले। और देखो निसंग है भारतीय टीम लगातार AFC और FIFA स्तर पर टूर्नामेंट मन में अपन स्थिति के मजबूत करे में लागले है और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कर माध्यम से भी महिला खेल के अधिक दृश्यता मिलत है। बड़ बड़ ब्रांड और कॉर्पोरेट या अब महिला खिलाड़ी ऊपर निवेश करत है उमने जेकर से कि आर्थिक सुरक्षा और खेल कर स्तर दियो में सुधार होवत है और गांव और शहर दियो क्षेत्र में मैया मन के खेल में अपन कैरियर बनाई खातिर परिवार और समाज दियो कर समर्थन भी मिलत है। फुटबॉल खेल ले देखो मैया मन कर आत्मविश्वास भी बढ़ेला, उमन में नेतृत्व कर

0: क्षमता भी बढ़ेला और संगे शारीरिक मजबूती भी उमन में आवेला।
1: सही कहली, तो बेटी छुआ के भी खेल में आगे बढ़ाए, लेकिन बहुत कम प्रयास जारी है। और देखो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बटले महिला खेल कर बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण सुविधा ऊपर विशेष ध्यान दिल जाते, जेकर से कि उमन के विश्व स्तरीय अनुभव देखे ले मिलत है। वर्तमान समय में पुरुष फुटबॉल कर वनस्पत महिला फुटबॉल में वित्तीय निवेश प्रायोजन कर वेतन कम है, और एखनो टीवी में खेल कर नियमित प्रसारण कम होवेला। लेकिन इस सब चुनौती कर बावजूद महिला सशक्तिकरण और खेल कर बटे अपन लगाव कर चलते भारत में जे महिला फुटबॉल कर भविष्य आवे वाला दिन में बहुत उज्जवल है नहीं?
0: तो ये रहे महिला फुटबॉल का लोकप्रियता कर बारे में, और हमारे मन के भी अपन छोवा ये छोवा कर संगे संगे मैया मन के भी खेल बटे जरूर आगे करे चाहिए।
1: सही कहली।
0: तो चलो एक बात हमारे मन सुनब एगो नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मन कर गावल।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तो ये रहे विज्ञापन संदेश, और रुकर से पहले हमारे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मनकर गावल। तो चलो सुमन बहन, एखन हमारे मन जानकारी करी ला कि गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, तो कर बारे हमरे के बताते हैं शीतल कुमारी और बातचीत कर रहे हमरे कर सुमन बहन।

0: अपने चरण सीमा पर है गर्मी। इस मौसम में सूरज बहुत तेज चमक रहा है और बाहर बहुत तेज धूप है। लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। अब बच्चे गर्मियों की छुट्टी उन्हें अच्छी लगती है, वे खेलते हैं, घूमते हैं और ठंडी चीजें खाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। गर्मी में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। त्वचा पर दाना होना, खुजली, लाल निशान, फोड़े हो सकते हैं। इन्हें हम त्वचा का संक्रमण भी कहते हैं। हमारा शरीर बहुत कीमती है, हमें शरीर को साफ रखना चाहिए। साफ रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। गर्मियों में हमें रोज नहाना चाहिए, साफ सूती कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए और हमारा शरीर अच्छा रहता है। गर्मी में लोग पंखा, कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। गर्मियों में आम, तरबूज और खरबूज जैसे फल मिलते हैं। ये फल शरीर को ठंडक देते हैं। गर्मियों में पेड़ पौधे भी पानी की जरूरत होती है, नहीं तो ये कुम्हलाने लगते हैं। उसी तरह जानवर भी छाया ढूंढते हैं। गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, त्वचा पर पसीना आता है, इस कारण त्वचा का संक्रमण हो सकता है। अगर त्वचा स्वस्थ रहती है तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। त्वचा के कारण हम गर्म और ठंडा महसूस कर पाते हैं। त्वचा हमें चोट से बचाती है, इसलिए हमें त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। जब त्वचा पर कीटाणु लग जाते हैं और त्वचा खराब होने लगती है तो उसे त्वचा संबंधी संक्रमण कहते हैं। गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। पसीने और गंदगी के कारण त्वचा पर कीटाणु जल्दी बढ़ते हैं, इससे खुजली, दाने और फोड़े हो सकते हैं। अगर हम शरीर साफ नहीं रखते हैं तो संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए गर्मियों में साफ सफाई बहुत जरूरी है। गर्मियों में होने वाले त्वचा संक्रमण के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं शीतल जी। शीतल जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शीतल जी। गर्मियों के दिनों में बच्चे हों या बड़े, त्वचा में संक्रमण

0: अपन चाहे कोई भी तरह की रख रखाव हमें अपनी त्वचा की किस तरह से करनी चाहिए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: हमारी त्वचा ऐसे तो हमारे शरीर का काफी महत्वपूर्ण भाग होती है और त्वचा हमें धूल हो गया, मिट्टी, धूप, कीटाणु ये सबसे बचाती है। और अगर हम अपनी त्वचा इसे सफाई तरीके से नहीं रखते हैं तो त्वचा में कई सारी समस्याएं हो सकती है। गर्मी, गंदगी, पसीना, कीटाणु ये सब के कारण त्वचा खराब हो सकती है, इसलिए हमें अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए। काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें कि पहला नंबर पे हम घमौरी बोल सकते हैं, जिसमें कि घमौरी जो होती है गर्मी में होने वाली एक सामान्य समस्या है। इसमें त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, इनमें खुजली और जलन होती है और ये ज्यादातर जल्दी पसीना आने के कारण होती है। इससे बचाव करने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए जैसे कि हम सूती के कपड़े भी कहते हैं, और ज्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, साथ ही साथ ठंडी जगह पे रहना चाहिए। उसके बाद फिर खुजली भी हो सकती है गर्मी में, खुजली जो कि ये भी काफी आम समस्या है, इसमें भी त्वचा को इसमें भी त्वचा जो है उसे खुजलाने का मन करता है और ये भी गंदगी और पसीने के कारण खुजली हो सकती है। और ये जो खुजली होती है इससे भी बचने के मुख्य रूप से वही सारे प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन मेजर्स जो जिसे बोलते हैं वही है। उसके बाद दाद आता है जो कि एक त्वचा का ही रोग है जिसमें कि गोल निशान बन जाता है और इनमें बहुत सी खुजलियां होती है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इससे बचाव के लिए साफ तौलिया का इस्तेमाल करना चाहिए और लाइक घर पे ऐसा बनाना चाहिए कि सबका अपना अपना टॉवल है और दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शरीर को सूखा रखे और रोज सफाई रखे, समय पर दवाई ले, ये सब करने से ये सब कुछ प्रिवेंशन मेजर है जिससे कि ये सब छोटी मोटी गर्मियों की जो जो परेशानी होती है, जो जो त्वचा की प्रॉब्लम्स होती है वे सबसे छुटकारा मिल सकता है। अंततः त्वचा हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और अगर हम साफ सफाई रखें और अच्छी आदतें अपनाएं तो त्वचा की समस्याएं से बच सकते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ त्वचा से हमारे जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है।
0: माता पिता को गर्मी के दिन में बच्चों के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?
1: माता पिता को ऐसे तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बच्चों को साफ रहना सिखाना चाहिए और बच्चों को समय पर खाना और पानी देना चाहिए। अगर बच्चे की त्वचा पर दाने या खुजली हो तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तो साथ ही साथ उन्हें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि धूप में टोपी पहन करके जाए या फिर बाहर से आकर के हाथ पैर धोए और ज्यादा देर तक धूप में फिर उन्हें नहीं खेलने देना चाहिए, फिर उन्हें ठंडी और साफ चीजें खानी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें रोज नहाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। गर्मियों के दिन में त्वचा को धूप, टैनिंग और पसीने से बचाने के लिए काफी जरूरी होता है कि दिन में कम से कम दो बार फेस वॉश करें और घर से 20 मिनट पहले निकलने से कोई भी सनस्क्रीन अच्छी वाली भी लगा लेनी चाहिए और खुद को काफी ज्यादा हाइड्रेट रखना, भर करके पानी पीना काफी आवश्यक होता है। सनस्क्रीन ऐसे तो काफी ज्यादा होता है, नेसेसरी होता है, स्पेशली धूप में निकलने के समय जो बाहर है ऐसा तो इंडोर्स में भी सनस्क्रीन लगाया जाता है, लेकिन यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो त्वचा का ध्यान रखने के लिए सनस्क्रीन काफी जरूरी होती है। उसके बाद हाइड्रेशन और डाइट, जिसमें कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए और अपनी डाइट में तरबूज, खीरा, नींबू पानी ये सब चीजें शामिल करनी चाहिए जो कि शरीर और त्वचा दोनों को अंदर से ठंडा रखती है। और साथ ही साथ कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जो कि त्वचा को सांस लेने देने के लिए ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए जिसमें कि घमौरियों और रैशेस की समस्या ना होए।
0: अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे भी हमें राहत पाने के लिए इस तरह से अपने आप का ध्यान रखना चाहिए।
1: गर्मी से राहत पाने के ऐसे तो काफी सारे आसान उपाय होते हैं जो कि जिसमें कि पर्याप्त पानी पीना, जिसमें कि दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना, सादे पानी जिसमें कि या फिर ORS या फिर नारियल पानी ये सब भी ले सकते हैं, हल्के और सूती के कपड़े पहनना जो कि हल्के ढीले ढाले कपड़े होते हैं, काले या गहरे रंग के बजाय हल्के रंग के कपड़े को चुनना चाहिए, धूप से बचना चाहिए जिसमें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, यदि अगर निकलना पड़े तो छाता या फिर टोपी ये सब लेकर के निकले। और तो और सत्तू और छाछ का सेवन करना चाहिए, चने या जौ का सत्तू, छाछ, लस्सी, मट्ठा ये सब पेट को ठंडा रखता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। पानी से भरपूर जो फल होते हैं वे सब अपने आहार में इंक्लूड करने चाहिए जिसमें कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब शामिल करना चाहिए और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो कि डिहाइड्रेशन से बचाती है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए, बाहर जंक फूड से बचना चाहिए, ज्यादातर मसालेदार, भारी और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा लगती है और जिससे गर्मी और बेचैनी बढ़ती है। घर को ठंडा भी रखना जरूरी होता है जैसे कि दोपहर के समय घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आ सके, पर्दों का इस्तेमाल करें और कूलर या पंखे की हवा में रहें। लू और भीषण गर्मी से भी बचने के लिए देशी पेय जैसे सत्तू और शिकंजी बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: अभी गर्मी काफी तेज पड़ रही है और लू और भीषण गर्मी से हमें बचने के लिए देसी पेय और सत्तू और सिकंजी पीना चाहिए। आपने हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी, अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: तो एखन हमरे मन जानकारी कर ली कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें और ओकर बारे में बतात रहे शीतल कुमारी और बातचीत कर ले हमरे कर सुमन बहिन। तो सुमन दी चलो कोनो गीत कर जोगाड़ है का?
3: चलो तो फिर हमरे वो नागपुरी लोकगीत के सुन ले वीरा रीजरंग कर संगे तो केतकी देवी और संगी बनकर गावल।
2: चलो

0: हाँ तो एखन हमरे मन सुनली नागपुरी लोकगीत केतकी देवी और संगी मनकर कावल। तो चलो सुमन बहन और एगो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हमरे मन
1: जानकारी कर ले मिले।
0: तो ई योजना भारत सरकार बटले चलाल एगो प्रमुख कल्याणकारी योजना है जेकर उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराई वाला महिला मन के पहला दू गो जीवित छुआ मन ले वित्तीय सहायता देवे जेकर से कि उ मन के पर्याप्त पोषण और समुचित आराम मिले।
1: सही है। योजना कर अनुसार 5,000 रुपया कर सहायता सोझा लाभार्थी कर बैंक खाता में किस्त में भेजल जाएला। गर्भावस्था पंजीकरण और कम से कम एगो प्रसव से पहले जांच करवा ले 3,000 रुपया और छुआ कर जन्म पंजीकरण और प्राथमिक टीकाकरण में 2,000 रुपया देल जाएला। और ई राशि कर अलावे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कर बादे जननी सुरक्षा योजना में मिले वाला राशि भी इकर में जोड़ल जाएला। और दोसर छुआ अगर मैया है ले है तो योजना अनुसार 5,000 कर लाभ भी मिलेला।
0: तो रौरेमन भी योजना का लाभ जरूर उठाओ और संग्रह चलो। अब तो हमरे कर जाकर बेरा होते तो अगला सोमवार के हमरे फिर से अपन बहिन मन कर संगे गोठिया। तब तक खातिर देव विदा।
1: जोहार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मन तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के

0: मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: अरे महाराज,
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुर्जोरजी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुर्जोरजी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर। भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में

0: अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हथगोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ?
4: ये क्या हुआ?
5: अरे
4: बचो,
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
9: Sir.
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
7: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
7: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
9: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
2: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
9: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
2: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
9: फायर!
2: सर, ये टैंक तो गया।
9: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर। बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर! समय मत गवाओ, फायर!
2: सर, ये टैंक तो गया।
9: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल। अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
2: यस सर।
0: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट

के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभियान सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, हमारे दिल्ली केंद्र से 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप हमारे रांची केंद्र से सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

0: पे उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2020,

0: 76 today. The President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
1: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
0: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jaishankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping, largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. The pilgrims began from the whole. Nearly 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. Earlier, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju reiterated the government's commitment to ensuring a smooth, safe and comfortable Hajj experience. With the Hajj Suvidha mobile app, information and grievance reporting services are being provided to Indian pilgrims. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders. In reply, Kolkata Knight Riders scored only 163 runs in 18.4 overs. Kuldeep Yadav was declared player of the match. Earlier in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated hosts Mumbai Indians by 30 runs at Wankhede Stadium. Put into bat, Rajasthan Royals posted 205 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, chasing a target of 206 runs, Mumbai Indians managed to score 175 runs for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab. Parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heat wave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक, आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉय लॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 वर्ष तक पढ़ने की अनिवार्यता तय की गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतनमान और सेवा शर्तें उसके औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से नहीं बल्कि उस विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की तारीख से तय होंगी जिसके तहत भर्ती शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों को नई पहचान देना है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गाँवों की पारंपरिक जानकारी और नवाचारों को नई पहचान देना है। ये 2 माह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट और विशेषज्ञों की मेंटरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के 17,000 से अधिक छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र पंचायतों में जाकर स्थानीय नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण उत्पादों का अध्ययन करेंगे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर 1,25,000 रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
5: जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने दो चार उद्योगपति मित्रों से मतलब है, कैसे उनका मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी जेब भारी हो। जो रिफाइंड ऑयल है, डीजल पेट्रोल, उसे हम निर्यात कर रहे हैं। वारे वाह, विडंबना देखिए, अपने देश में हम महंगा करते जा रहे हैं, इसका असर क्या होगा, आम रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छूने लगेंगी।
2: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दामों की वृद्धि के लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉर्मूज पर नजर रखे हुए है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
6: पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहां स्थितियां बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएगी।
2: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए मौके पर ही स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकानों और होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
7: टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है, साथ में दुनिया लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट जो स्पॉट पे कई दुकान है, टेलीकॉम चे है, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सराइडेला से हमने स्टार्ट किया है और अगले दो दिन तक पूरे धनबाद जिले में अभियान जारी रहेगा।
2: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 953 अंक की उछाल के साथ 76,368, जबकि निफ्टी 268 अंक बढ़कर 23,987 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। रांची में आयोजित हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिला इकाइयों को महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सूची जमा करने तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में तृतीय झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के प्रतिभागियों ने 12 कैटेगरी में योगासनों का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों की स्टार कैटेगरी और महिलाओं की मॉम्स कैटेगरी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सरयू राय, आलोक मल्होत्रा और मनोज सत्यनारायण ने किया। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में करीब 50 बालक और बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षक प्रदीप तिर्की ने कबड्डी के महत्वपूर्ण डिफेंस कौशल एंकल होल्ड की तकनीक सिखाई। संघ के अनुसार आगामी दिनों में खिलाड़ियों को विभिन्न तकनीकी कौशल और फिटनेस से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम आपको सुनवाएंगे सिप्रा बोस को। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये ठुमरी। राग है मिश्र खमाश और बोल है साजन अबघर आजा।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे हैं सिप्रा बोस को। आइए सुनिए ये दादरा खातिर से या लिहाज से।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे सिप्रा बोस को। अब इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आइए सुने सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे हरिहरन की गाई कुछ गजलें। लीजिए सुनिए ये पहली गजल, बोल है सागर है मेरा खाली।

0: conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. A report.
1: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: The News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani.
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
0: The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying that it was sad that the National Testing Agency had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Arade sought responses from the Centre, the National Testing Agency NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The court directed the NTA to file an affidavit by Thursday detailing compliance with recommendations made last year by a committee headed by former ISRO chief K. Radhakrishnan for overhauling the agency's functioning. The petitions alleged recurring paper leaks had affected the rights of over 22 lakh students. The plea also sought the formation of a high-powered monitoring committee headed by a retired Supreme Court justice to oversee future examinations. A Delhi court has sent Pune-based physics lecturer Manisha Sanjay Havaldar to 6 days of Central Bureau of Investigation custody in the NEET UG paper leak case. A special judge, Ajay Gupta, allowed the CBI's plea seeking custodial interrogation of the accused. Havaldar was arrested on the 22nd of May and was produced before the court on transit remand. According to the CBI, Havaldar, who worked as a translator for NEET UG examination material and is associated with Seth Hiralal Saraf Parashala in Pune, allegedly circulated physical questions meant for translation along with other accused. The agency has described her as a key link in the alleged leak of NEET UG physics question papers. The Assam government today introduced the Uniform Civil Code Bill in the State Assembly. The bill seeks to ban polygamy and make registration of live-in relationships compulsory. The bill provides that it will not be applicable to any of the scheduled tribes residing in Assam. For marriage, the bill sets 21 years and 18 years as minimum age for men and women respectively and prohibits polygamy. To safeguard legal rights, the bill proposes to make marriage and divorce registration compulsory, which will be vital for securing maintenance, inheritance and other legal protection for spouses. State Cabinet Minister Atul Bora introduced the Uniform Civil Code Assam Bill 2026 in the House on behalf of Chief Minister Himanta Biswa Sarma.
3: On behalf of the Chief Minister, I have tabled the UCC today in the House. And our Honorable Chief Minister, he committed that if he comes to power, if MDA comes to power, it will table in the first session. That has happened today.
4: And I'm very sure this bill will have a very smooth sailing in the Assam Assembly. And once it gets the legitimacy, I'm sure the bill, once it gets the legitimacy and becomes a law, then it will be implemented in toto. Well, this will be discussed in the Assembly. I'm sure the honorable members will put forward their views. And then this will be properly passed.
0: With this, Assam has become the first in the Northeast and the third BJP-ruled state in the country to have introduced the legislation. The BJP promised to introduce UCC in Assam in its manifesto ahead of the 2026 assembly polls. The state cabinet approved the legislation in its first meeting on the 13th of this month. Finance Minister Nirmala Sitharaman today called for increased focus on fuel, fertilizer and forex amid the West Asia crisis, underlining that the domestic economy continues to be resilient. Speaking at an event to celebrate the 37th anniversary of SIDBI in Mumbai, the finance minister said the cut in diesel and petrol excise duties will lead to a revenue impact of 1 lakh crore rupees.
5: So to shield citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees.
0: She hit out at naysayers for creating a cynical and pessimistic narrative after Prime Minister Narendra Modi's appeals on altruism, pointing out that India cannot afford fear-mongering. Petrol price has been hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. With this revision, petrol will now cost 102.12 rupees per litre in Delhi, while diesel will now cost 95.20 rupees per litre in the national capital. The National Investigation Agency today conducted searches at three locations in Jammu and Kashmir's Srinagar and Shopian districts. Officials said raids were carried out at Darul Uloom Sirajul Uloom in Shopian's Imam Sahib area. The institution was declared an illegal entity last month. Searches were also conducted at the residence of former Jamaat-e-Islami chief Shahzada Aurangzeb in Shopian's Molu Chitragram area and at Jamiat Ul Banat, a girls' religious school in Srinagar's Lal Bazar area. The searches began early this morning. The government has refuted a message circulating on social media claiming that Defence Minister Rajnath Singh has made a statement regarding India's support to the Balochistan Liberation Army, BLA. The fact-check unit of the Press Information Bureau termed the claim fake and said the Defence Minister has not made any such statement. The government has also urged citizens to be cautious of such misinformation and verify it from official sources before sharing it. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jaishankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said the leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping, largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said Washington and Tehran have made significant progress in talks to reopen the Strait of Hormuz. Talking to reporters, Rubio said a preliminary agreement could pave the way for broader negotiations on Iran's nuclear program and regional security. However, he stressed that President Donald Trump would not accept what he called a bad deal and would give diplomacy every chance before considering other options. The U.S. Secretary of State said there has been global support for the ongoing efforts to end the conflict in West Asia, but added that the road to peace is not very easy. Mr. Rubio also said the United States is continuing efforts to maintain stability in Lebanon, blaming Hezbollah for ongoing tensions in the region. Rubio is currently in India for meetings with Indian leaders and will attend the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. The Inter-Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for Delhi, forecasting heatwave conditions over the next 3 days. According to the Met Department, the daytime temperatures in the national capital are expected to remain between 44 and 46 degrees Celsius. Heatwave conditions are also expected to persist over Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, east Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Telangana and west Uttar Pradesh during the next 2 days. IMD said hot and humid weather conditions will persist over Gangetic West Bengal today. East Uttar Pradesh and Vidarbha are likely to experience a warm night tonight. Madhya Pradesh has entered the North Apa period starting today, and it is going to last till the 2nd of next month. North Apa is basically those 9 days in the year when the sun is at its harshest and the heat is at its absolute peak. More from our correspondent.
6: Madhya Pradesh has entered the North Apa period starting today, and it's going to last till June 2nd. North Apa is basically those 9 days in the year when the sun is at its harshest and the heat is at its absolute peak. The weather department has issued a heat wave warning for 44 districts across the state today. Things are most serious in Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Satna. These 5 districts have been put on red alert. Yesterday, Khajuraho and Nogaon turned out to be the hottest spot in the state, with temperatures hitting 45.8 degrees Celsius. In the state capital Bhopal, it was 42.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degrees, and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th, and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual 5-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
7: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
8: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
7: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने NEET UG पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की हिरासत में भेज दिया है। NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल खुला रहेगा। ये तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
9: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
7: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है।

0: ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी तरह की रात की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 आज समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा केंद्र मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। ये वक्त है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती का। आइए सुने ये पहला गाना। इसे हमने लिया है फिल्म लक्ष्य से। आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश की। बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में आइए सुने साहिर लुधियानवी के बोलों को। इस गाने को हमने लिया है फिल्म कभी कभी से और इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

जय भारती, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आइए एक बार फिर सुने फिल्म अपना देश का ये गाना। बोलो को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव परमन ने।

0: आइए सुनिए फिल्म सिलसिला का ये गाना, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शिवहरी का संगीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा पर राज्य के राजनीतिक दलों ने गहरी खुशी जताई है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने इसे आदिवासियों और झारखंड की अस्मिता की जीत बताया है।
2: तो लास्ट का दिन, हालांकि गुरुजी इससे भी ज्यादा के हकदार थे, हम लोगों ने तो भारत रत्न की मांग की थी, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धरती पर कोई दूसरा अवतरित हो गया इस तरह की करिश्माई नेतृत्व।
1: इधर भाजपा नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुरुजी के संघर्षों को सराहा है।
3: झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी और झारखंड आंदोलन से भी पहले वो शराबबंदी के खिलाफ उनका जबरदस्त आंदोलन था, जिस शराबबंदी को आज हेमंत सोरेन ने नकार दिया और शराब को बेचने के लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा। गुरुजी के उसूलों को उन्होंने भूल दिया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं भूली और पद्म भूषण का सम्मान दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी गुरुजी ने जबरदस्त संघर्ष किया था।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवादों से कोई

0: सबक नहीं सीखा है। यह 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा कराने के लिए किसी अधिक मजबूत और स्वतंत्र संस्था को लाने की मांग की गई है। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए झारखंड का पहला ओपन जिम बनेगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जगह चुन ली है। जेल अधीक्षक और एडीएम ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। उपायुक्त की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। इससे जेल के 1,568 बंदियों को फिट रहने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने आगामी बकरीद त्योहार को लेकर कचहरी मैदान में मॉक ड्रिल किया। पुलिस कप्तान ऋषभ गर्ग ने बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह मजिस्ट्रेट, महिला बटालियन और पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
1: 20 तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज जो है राइट मॉक ड्रिल का एक अभ्यास किया था, और इसी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वह टीयर गैस शेल हो या फिर स्टक ग्रेनेड्स हो, उन सभी का भी अभ्यास किया गया और उसकी देखा गया कि कारगर वो कितना है। सभी की कार्रवाई अच्छी थी और हम लोग आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बकरीद का पर्व मनाएंगे।
0: सिमडेगा के पाकरटार थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की थी। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी जामताड़ा के ठगों को सिम और एटीएम कार्ड भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से एटीएम, सिम, मोबाइल और बाइक बरामद की है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में गुरिंदर सिंह ने 100 मीटर, विशाल टीके ने 400 मीटर और तेजस्वी शंकर ने डेकैथलॉन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे अंत्याक्षरी।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल।

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: और आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप अंताक्षरी. तो लीजिए सबसे पहले सुनिए ये पहला गाना माँ अक्षर से.

आइए सुनिए रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम का ये पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम, अनजान के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आइए सुनिए फिल्म मेरे हमसफर का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मेरा साया, इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोलो को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने। आइए सुने किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सफ़र का ये गाना, इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मशाल का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

0: पढ़ी लिखी दीदी दे लो, वो लोग अपना घर पे बता के वो जान सकती है कि हमको इतना इतना दिन में पैसा जमा करना है। फिर वह पुस्तक संचित बताती भी है, पर अपने मन की संतुष्टि के लिए वह पासबुक अपना घर ले जाना पड़ता है, फिर उसका हर बैठक में उसको लाना पड़ता है। इस पर 7 रजिस्टर होता है, जो 7 रजिस्टर को हमको यानी पुस्तक संचालक लिखती है बैठक में ही। तो हम लोग को महिला समूह से जुड़ के हम लोग को बहुत सारी लाभ हुई मैम, कि पहले हम लोग को यहाँ कोई महिला यानी कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, गांव में रहते हुए थे, रहते हुए भी एक दूसरे को बात नहीं करते थे, वे अपना काम कर रहे, ये अपना काम कर रहे, इस प्रकार सब अपने अपने में रहते हैं। पर जब से हमारे गांव में महिला समूह का ड्राइव चला, हम लोग एकजुट हुए, तब से हम लोग हर रोज एक दूसरे के हेल्प भी करते हैं और एक साथ हर संडे को बैठते हैं। उसके अलावा भी हम लोग 15 दिन के अंदर बैठते थे, अभी कुछ दिन से नहीं बैठ रहे हैं पर बैठते थे, और उस पर सभी चीज़ को डिस्कस करते थे कि आपका घर में क्या परेशानी है, आपको क्या चीज़ का कमी है, या आपका घर में ज़्यादा काम है तो हम लोग जाके सभी लोग कर देंगे। इस प्रकार हम लोग उस चीज़ को बात को रखते थे, और उसके से हम लोग बात को रखते हुए वे लगता था कि उनको नहीं करने सकेगी, तो हम लोग उनका हेल्प करते थे जाके। इस प्रकार हम लोग महिला समूह तो एक एक दूसरे से एकजुट हुए। हाँ, हमारे गांव में 8 कुल महिला समूह है मैम, इसमें सभी समूह में 12 से 14 मेंबर है। इसमें हम लोग आरा में है 5 और कैरम में 3 है। तो इस प्रकार हम लोग गांव में सभी महिलाएं समूह में जुड़े, और समूह में जुड़ने से हमें बहुत सारी लाभ मिली। आज के डेट में जो JSLPS के समूह में ही जुड़ी उन्हीं दीदी लोगों को लाभ मिल सकता है, अगर वे जुड़ी नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार हम लोग समूह में जुड़ के ये 20 रुपया तो एक बहाना है मैम कि हम लोग इसको बचत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता होना, गरीबी को दूर करना, हम लोग साथ एकजुट रहेंगे, एक दूसरे को बात साथ बात को रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते। अपनी बात अपने पास रखेंगे तो कभी एक दूसरे को बारे में जान भी नहीं पाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार हम लोग एक दूसरे को शेयर करना सीखेंगे, तभी हम जिसे बताएंगे तभी दीदी जान सकती है कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो हम लोग समूह में जुड़े तब से हम लोग दीदी लोग, पहले तो यहाँ के लोग पास पैसा नहीं था, तो जो बड़े कार्य करते थे, शादी ब्याह हो गया तो वे लोग जमीन उमीज को बंधक रख देते थे, या फिर अचानक बच्चा लोग को तबीयत खराब हो जाता था तो किसी से पैसा मांगने पर भी वे रहने पर भी बोल देते थे नहीं रह नहीं है पैसा नहीं देंगे। पर हम लोग जब से समूह में जुड़े तब से हम लोग को जब चाहे तब, रात हो या दिन हो, जब चाहे हम लोग जाएंगे और समूह में कह सकते हैं कि हमको इतना पैसा का जरूरत है, और हम लोग पैसा निकाल से अपना बच्चा को सही टाइम में इलाज करवा लेते हैं। इस प्रकार हमें सभी को जुड़ के बहुत सारी लाभ भी मिली। हम लोग को कहीं बाहर की ड्राइव में भी गए, बाहर बाहर देखे कि महिला में जुड़ के कैसा करना चाहिए। जब से हम लोग महिला में जुट एकजुट हुए तब अपना से निर्णय लेने भी लगे। हम लोग सबसे पहले महिला मंडल में जुड़ने के बाद सबसे पहले हम लोग निर्णय लिए कि यहाँ जो हम लोग को मम्मी लोग हैं, दादी लोग हैं, उन लोगों को पहले हम लोग जो साइन करना नहीं आता है मैम उसको हम लोग साइन करना सिखाएंगे। बाद दो दो दीदी लोग मिल के उनको साइन करना सिखाएं। यहाँ 3-4 ही दीदी लोग हैं जिनको आँख के प्रॉब्लम से वो साइन करना नहीं चाहती है, न तो बाकी बात दीदी जो अनपढ़ भी है वो लोग भी साक्षर है, वे साइन करना जानती है। उसके बाद फिर हम लोग बोले चलो हम लोग तो साइन करना सीख लिए, पर हम जब हम लोग गांव इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला है, तो हमारे गांव में कितने सारे लोग आते हैं कि नशा मुक्ति अच्छे की ओर ही लोग बढ़े, तो हम लोग क्यों ना और अच्छे की ओर ले जाए, हमारे गाँव को साफ सफाई की ओर। सबसे पहले तो हम लोग महिला मंडल में जुड़ने से हम लोग पहले सोचे कि चलो हम लोग महीना में एक दिन पूरा गाँव का भ्रमण कर दें, पूरा गाँव को साफ करेंगे। फिर बोले नहीं, महीना में अगर करेंगे तो हमारे यहाँ तो घास फूस पेड़ पौधा है ही, उससे पुआल सब हम लोग का रहता ही है, उससे और ज्यादा गंदगी होते रहता है, नहीं हम लोग इसको सप्ताह करेंगे। सप्ताह के बाद मिले नहीं, जब हम लोग इसको सप्ताह करेंगे काहे नहीं, इसको हम लोग थोड़े ही रोज हर रोज करेंगे तो काहे नहीं साफ हम लोग का गाँव होगा। हम लोग सारे लोग यहाँ हर रोज निकलने लगे, यहाँ तक पुरुष लोग भी निकले, बच्चा लोग भी निकले, और उसके बाद साफ सफाई करने लगे। इस प्रकार हम लोग सभी लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग डेली साफ करेंगे तो अच्छा होगा।
1: चलिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही थी आरा केरम गाँव की ग्रामीण महिला बहन सीमा देवी से। श्रोताओं, सचमुच ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम अपने

राष्ट्र, समाज, गांव और परिवार के विकास के साथ साथ खुद के विकास पर विशेष ध्यान दे सकें। बस जागरूक रहकर सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी भागीदार बने। तो श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारे आज के आओ साथ चलें कार्यक्रम का वक्त भी अब यहीं समाप्त होने को है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे आओ साथ चले। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी, स्वर सिंधु मिश्रा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से सुनेंगे आप सांझ सरगम। शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युववाणी, चर्चा भारतीय युवा और फुटबॉल, इतिहास में आज का दिन। प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे। साथियों, श्रमिक लोक औद्योगिक प्रसारण आप सुनेंगे 5:30 से गंगा दशहरा। स्वस्थ तन के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाएं। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन सकते हैं। चर्चा मिट्टी स्वास्थ्य और परीक्षण। भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। साथ ही हमारी दुनिया आप सुनेंगे 6:30 से चर्चा कामकाजी महिलाओं का दोहरा संघर्ष। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। 7:11 से जिले में आजकल 7:15 आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम उरांव भाषा में। प्रस्तुत करता है प्रदीप कुमार। रात्रि 7:45 प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। और रात के 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 सुर्खियों में।

रात के 10 बजे सुनहरी यादें और 10:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम। कलाकार होंगी सबिता राय। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

साथियों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्रों से 4:35 और 30 सेकंड कार्यक्रम सांझ सरगम में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। रितेश का नमस्कार स्वीकार करें साथियों।

लेकर हम दीवाना दिल आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात में किशोर और आशा भोसले को, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम।

0: दिल भर दिल से प्यारे। लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म गरबा में, संगीतकार राहुल देव बर्मन। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। लेते हैं एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए हैं। गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बड़ी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। देवघर के नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आज तड़के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम से आईआईटी इंदौर भेजा गया है, जहां वे वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझेंगे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव में हुए जमीन विवाद और गोलीबारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही गायक मोहम्मद रफी के गाए कुछ गाने। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें आज चर्चा होगी कीटनाशकों के प्रयोग एवं सावधानी। उड़िया लोकगीत से सुनिएगा सुरभि पान और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता होगी मिट्टी के कुल्हड़ बनाने वाले युवा से बातचीत। भेंटवार्ताकार होंगे लक्ष्मी कुमार और इनसे बातें करेंगे कमलेंदु महतो। पंच परगनिया लोकगीत का आनंद लीजिएगा सुहास कोयरी व साथियों के स्वर में।

6:02 में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो आकड़ा। 6:30 पर सुनिए युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रम से हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमश हिंदी और अंग्रेजी में, और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक ही गायक के गाए गाने। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गाने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म। हम साया से गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

अभी आपने सुना फिल्म हवस का ये गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की, और आइए सुनते हैं फिल्म ताजमहल में मोहम्मद रफ़ी को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और रही सुनते फिल्म अमानत का ये नगमा, आवाजें मोहम्मद रफी की है।

अभी आपने सुना फिल्म आज और कल का ये गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म का गाना आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता आज सुन रहे थे एक ही गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गाने। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। किसान भाई बहनों, इन दिनों आप सभी काफ़ी व्यस्त होंगे और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में खेतों की तैयारी या फिर और भी जो भी फसल लगाने की तैयारी है इसके पीछे आप लगे हुए। किसान भाई बहनों, खेतीबाड़ी की जहाँ तक हम बातें करें तो खाद या उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अगर कोई बीमारी लग जाए तो फिर कीटनाशकों के व्यवहार के रूप पर भी हम बहुत कुछ चर्चा करते हैं और इनके उनके साथ हम पूछताछ भी करते हैं कि हमारा फसल इस तरह का हो रहा है, हम किस तरह से इनका बचाव कर सकते हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में स्वनिर्मित कीटनाशक अगर हम नहीं बना पाए तो फिर खाद भंडार या फिर बीज भंडार जो है वहाँ पर जाकर के हम काफ़ी कुछ कीटनाशकों के बारे में हम जानकारी लेते हैं और खरीदते लाते भी हैं। लेकिन किसान भाई बहनों, ये जो कीटनाशक हैं काफ़ी जहरीले होते हैं और काफ़ी असरदार भी होते हैं। इनका असर फलों में, सब्जियों में कई दिनों तक, कई सप्ताह तक रहता ही है और कुछ न कुछ अंग हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर पर भी ये असर डालता है और हम कई तरह के बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हानिकारक तो है ही, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो, पर्यावरण के लिए या फिर मिट्टी के लिए। इसलिए हम जहाँ तक संभव हो स्वनिर्मित कीटनाशक बनाएं जो कि हानिकारक भी ना हो और हमारे आसपास से जो भी वनस्पति या जड़ी बूटियां हैं इनसे बन जाए, जिससे कोई नुकसान भी नहीं, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बल्कि उल्टा लाभदायक भी है। इनसे फसलों के जो बीमारियां हैं इनसे बचाव भी होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो किसान भाई बहनों, कीटनाशकों के व्यवहार भी अगर आप करते हैं तो ऐसे समय पर करें जिस समय वातावरण शांत हो, किसी तरह से कोई हवा ना बहता हो, ताकि हवा के आपके शरीर में हैं जो कीटनाशक हैं इनका छिड़काव अगर हो जाए तो फिर शारीरिक नुकसान भी होता है। शरीर के किसी भी भाग पर, चाहे वो त्वचा पर लगे या फिर आँख या नाक कहीं भी लग जाए तो फिर बहुत ही नुकसान होता है हमारे शरीर। इसलिए सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है। इसके पूर्व आप जो भी आवश्यकता हो, मास्क हो या गमछे माथे पर लगा लें। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से पूरी तरह से ढकी हुई हो, जो जरूरी वस्तुएं हैं चाहे वो प्लास्टिक के बने हों या फिर सूती वस्त्र।

हों, इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें छिड़काव के, ताकि हम स्वस्थ भी रहें, हमारा फसल भी बच सके। तो किसान भाई बहनों, कीटनाशकों के व्यवहार के पहले जो भी निर्देश दिए गए हैं उस दवा के ऊपर, उसका भी आप ज़रूर पालन करें, ताकि हम सदैव स्वस्थ रह सकें। तो कीटनाशक के बारे में हम कुछ जानकारी ले रहे थे, इनके प्रयोग और इनके इस्तेमाल के असर के बारे में, और कितने हानिकारक और कितने लाभदायक है, इस पर भी कुछ हम जानकारी ले रहे हैं। तो किसान भाई बहनों, इस जानकारी के पश्चात हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं प्यारा सा उड़िया लोकगीत सुरभि पान एवं सात।

0: इस लोकगीत के पश्चात किसान भाई बहनों आपके लिए एक जरूरी
1: वायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है,

0: हैं और अच्छी तरह से बना भी लेते हैं। कैसे सीखे, कहाँ से सीखे और इससे वे किस तरह से कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कितना सुरक्षित है, इन सभी बातों को लेकर हम विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे लक्ष्मी कुमार जी के। तो कूलर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, विक्रय व्यवस्था किस तरह का है, सब कुछ जानकारी लेंगे। आइए मिलते हैं लक्ष्मी कुमार।
1: श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम में हम मिलते हैं एक युवा हुनरमंद व्यक्ति से जो अपने कामों से काम भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं और अपने घर आंगन में ही रह करके अपना आय का एक अच्छा माध्यम भी ढूंढ चुके हैं। तो ये अपने आय के लिए या फिर स्वरोजगार के लिए क्या क्या किया अपने ज़िंदगी में, और अभी जो वर्तमान मिट्टी से जुड़े कई ऐसे घरेलू उपयोग के वस्तुएं बना रहे हैं और इनसे काफ़ी अच्छा आम लोगों का एक सेवा भी और ज़रूरत भी पूरा हो रहा है। तो हम मिलते हैं इस कार्यक्रम में। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है?
2: मेरा शुभ नाम है लक्ष्मी नारायण कुमार।
1: अच्छा, तो लक्ष्मी जी, हम देख रहे हैं कि आपके इस आंगन में बहुत सारे ऐसे मिट्टी से बने वस्तुएं हैं, जैसे ये चाय पीने के लिए जो कुल्हड़ होता है ये भी बना रहे हैं और फिर मूर्ति भी बना रहे हैं। हमने मिट्टी से जुड़े कई प्रकार के ऐसे, चाहे घड़ा हुआ, बर्तन हुआ, हर प्रकार के, अपने परिवार भी सभी कोई इससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो काम है, ये सब आप कब से कर रहे हैं और कहाँ से सीखे, या फिर इससे पहले और कुछ कर रहे थे?
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ
1: अच्छा
2: कि हम इससे पहले किसी और लाइन पे जुड़े हुए थे, है
1: अच्छा
2: ना।
1: हाँ
2: पहले हम पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस
1: हाँ हाँ हाँ
2: काम को लेकर हमको बाहर भी जाना पड़ा था, तो
1: अच्छा।
2: सब दिन तो ये सब काम बाहर में चलने वाला है नहीं।
1: हाँ, सही बात है। एक उम्र के अनुसार ये सब
2: हाँ
1: मैंने बाहर जाना फिर लौटना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है और इस सफ़र में कभी कभी काफ़ी समय भी गुजर जाता है। तो इसके अलावा आप जो बाहर में गए थे तो किस तरह का पेंटिंग का काम करते थे?
2: ये घर का जो पेंटिंग होता है,
1: हाँ,
2: पुट्टी करके पेंटिंग होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर, है ना।
1: अच्छा।
2: तो हम कंपनी से ही हम एक्चुअली जुड़े हुए थे बर्जर पेंट्स में, ठीक है ना।
1: हाँ।
2: तो धीरे धीरे हम सोचे कि पहले से हमको मिट्टी के काम में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है।
1: हाँ।
2: तो फिर मैंने अपने पापा से एक दिन डिसाइड किया, पापा ये
1: अच्छा।
2: सब काम करना सही है या गलत है। तो फिर पापा बोले कि देखिए, अभी वर्तमान समय में जो लड़का लोग हैं ये
1: हाँ,
2: सब कोई इच्छुक नहीं है काम
1: सही
2: करने में,
1: बात है।
2: ठीक है ना। और पहले से जो काम कर रहे थे बड़े बुजुर्ग लोग,
1: हाँ
2: वो सब अभी धीरे धीरे, कोई किसी किसी का निधन हो गया या
1: हाँ
2: फिर
1: सही बात है।
2: अब
1: उम्र
2: धीरे धीरे,
1: चलते से लोग
2: हाँ
1: अब बहुत कोई माने अभी नहीं रहे,
2: हाँ नहीं
1: और
2: रहे। तो धीरे धीरे अब ये सब काम में बहुत, मतलब कम ही लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हम
1: हाँ
2: सोचे कि ये सब काम में आगे एक दिन बढ़
1: काम
2: सकते
1: आएगा
2: हैं।
1: और जरूरी भी है।
2: हाँ, फिर अपना काम को हम सीखने में इंटरेस्ट दिए, है ना। तो फिर इस काम को मैंने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखे,
1: अच्छा।
2: है ना। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हमको कुछ आइडिया लगा
1: हाँ,
2: लगा तो फिर हमको यूट्यूब चैनल से ही हमको एक नंबर मिला।
1: अच्छा।
2: तो फिर हम संपर्क किए, मशीन वशीन कहाँ मिलता है। फिर हमको जाना पड़ा बिहार,
1: अच्छा।
2: बिहार से हम लेके आए मशीन, कूलर मशीन, और वहाँ कुछ डेमो करके भी दिखाया हमको।
1: हाँ,
2: और फिर हम कुछ तो हम 90% यूट्यूब के माध्यम से ही सीख चुके थे, खाली
1: अच्छा
2: हमको
1: अच्छा हाँ
2: हाथ
1: हाँ
2: फ्री करना था।
1: हाँ हाँ सही
2: तो
1: बात
2: जो 10% था वो भी हम सीख लिए। फिर
1: है।
2: लाके हम अपना मशीन फिट कर लिए अपना घर में और अपना काम को चालू कर।
1: तो ये जो कूलर बनाने के जो आप जानकारी दिए, इसमें आप काफ़ी हद तक मोबाइल के माध्यम से सीखे, इसके साथ साथ फिर आपको उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उपकरण हैं या फिर मशीन हो या फिर सांच हो, ये सब लाने के लिए आपको बिहार भी जाना पड़ा। तो ये इसके लिए मैंने मिट्टी का जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता किस तरह का होना चाहिए?
2: वो एक चिकनी मिट्टी होता है ना। उस चिकनी मिट्टी को तैयार करके बनाया जाता
1: अच्छा।
2: है ना।
1: हाँ
2: तो एक दिन भिंगाना पड़ता है, भिंगाने के बाद उसको 3 दिन के बाद फिर उसको उठाना पड़ता है। उठा के फिर उस मिट्टी से हम लोग कुल्हड़ बनाते हैं।
1: अच्छा, तो इस मिट्टी में मतलब पूरा महीन रहना चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर बालू इस तरह का नहीं
2: नहीं
1: रहना
2: नहीं ऐसा
1: चाहिए?
2: नहीं रहना। हम उसको एक पुट्टी मिक्सर मशीन है,
1: हाँ।
2: उसमें हम मिट्टी को मिक्सिंग करते हैं,
1: अच्छा।
2: है ना। पूरा घोला बना के उसको छान के एक गड्ढा में डाल के उसको सुखाते हैं,
1: अच्छा।
2: तो 3-4 दिन में वो रेडी हो जाता है
1: हाँ
2: बनने लायक।
1: अच्छा।
2: फिर उसको निकाल के फिर दूसरा घोला डालते हैं, फिर इस मिट्टी को ख़त्म करते करते वो मिट्टी तैयार हो जाता है। फिर हम उसको निकाल के ऐसे

0: कैंटीन ही रहता है।
1: तो मैंने पहले जो भी सूखा मिट्टी रहता है उसको आप घोला के रूप में उसको अच्छा से ये करके छान करके, यानी कि पूर्ण रूप से ये किसी प्रकार का कंकड़ पत्थर नहीं, महीन रहता है, और जैसे वो बनाने लायक जो सूखने लगता है उसको आप गीली मिट्टी को ही आप सांच में डाल करके इसको आप दबा के उसमें यह करते हैं ना।
0: हाँ हाँ एक ही प्रोसेस है। मिट्टी पहले तो मोटर ऑन करते हैं,
1: हाँ
0: मेरा चक्री घूमता है, फिर मोल्ड डालते हैं, मोल्ड के ऊपर मिट्टी डालते हैं, मोल्ड के मिट्टी के ऊपर एक प्रेस करने के लिए मशीन में फिट है,
1: अच्छा,
0: फिर ऐसे कंटिन्यू बनते रहता है।
1: अच्छा
0: हाँ। एक मिनट में करीबन 15-16 गो निकल जाता है।
1: अच्छा हाँ, मैंने जितना जल्दी कीजिएगा उसी साइज का, एक ही साइज का
0: एक
1: बनता
0: ही
1: है
0: साइज
1: सर।
0: का बनता है, और भी साइज है उसका,
1: हाँ
0: उसके लिए मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, फिर
1: चेंज करना पड़ेगा।
0: हेड चेंज करना पड़ेगा तभी
1: और
0: बन पाएगा।
1: साधारणतः ये मैंने एक पतला और हल्का भी बनना चाहिए
0: हाँ
1: ताकि लोगों
0: हाँ
1: को मैंने पकड़ने में सुविधा हो।
0: हाँ हाँ
1: और इसमें साँच, इसमें जो साँच इस तरह का बना हुआ है कि उसमें देखने लायक थोड़ा मैंने थोड़ा डिजाइन भी किया हुआ है तो अच्छा भी लगता
0: उसमें
1: है।
0: मोल्ड में ही वो डिजाइन बना हुआ रहता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इसके ऊपर हम लोग अलग से डिजाइन नहीं बनाते हैं।
1: एक बार साँच से निकाल दिया फिर उसको आप अलग से सुखाने के लिए आप समय देते हैं ना।
0: हाँ, सुखा के फिर उसका जो मुंह रहता है
1: हाँ
0: जिसमें हम लोग ओट लगा के चाय पीते हैं, उस कोर को हम लोग पानी भिंगा के उस कपड़ा से
1: अच्छा घुमा
0: उसको
1: देते
0: घुमा
1: हैं।
0: देते हैं तो चिकना हो जाता
1: चिकना
0: है।
1: हो जाता है।
0: हाँ, फिर उसको धूप में सुखा देते हैं। धूप सुखाने के बाद हम लोग फिर अपना भट्टी में डालते हैं पकाने के लिए,
1: हाँ।
0: ऐसे शाम को डालते हैं, फिर उसको सुबह निकाल लेते हैं
1: अच्छा,
0: तो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है।
1: हाँ, मैंने जिस तरह अन्य बर्तन को मैंने आपको जलाते हैं चाहे वो खपड़ा हो या कोई हंडी हो तवा हो, उसी भट्टी में आप इसको इस तरह से मैंने पकाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ उसी भट्टी में पकता है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो इसके मिट्टी में कोई और कोई रंग वगैरह कुछ चढ़ाना पड़ता है कि
0: नहीं,
1: सिंपल रहता है ऐसे?
0: ऐसे मटका उटका में तो हम लोग कलर चढ़ाते
1: हाँ
0: हैं,
1: कलर चढ़ाते हैं।
0: लेकिन अब इसमें नहीं चढ़ाते हैं, कुल्हड़ कप में नहीं चढ़ाते हैं,
1: हाँ
0: क्या है कि इसमें अगर मिट्टी के कलर अगर चढ़ा देते हैं तो फिर उसका स्मेल जो आता है
1: हाँ इसमें
0: मिट्टी
1: होगा
0: का
1: वो सेंट
0: वो।
1: लगेगा, इसीलिए अच्छा
0: हाँ
1: नहीं लगता है। जो ओरिजिनल जो मिट्टी है बस उसी में अच्छा रहता है
0: हाँ
1: और पीने भी
0: वही
1: अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता
1: है। तो ये सब बनाने में या फिर शुरुआत करने में जो आप मशीन वगैरह लिए फिर थोड़ा बहुत सीखने के लिए भी समय दिए, तो ये मशीन वगैरह का ने किस तरह का व्यवस्था किए? उसमें खरीदना पड़ा अपना पूंजी से या फिर कहीं कहीं से कुछ लोन वगैरह भी लेना पड़ा?
0: अपना पैसा से ही खरीदना तो पड़ा, क्या कि मार्केट में अवेलेबल तो ये आसपास में है नहीं कहीं,
1: हाँ
0: तो फिर हमको पैसा कौड़ी का भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, नहीं हुआ था ऐसा
1: अच्छा।
0: बात नहीं, तो फिर कुछ लोन लिए थे हम भी। लोन लेने के बाद हम मशीन को मंगाए,
1: हाँ
0: एक मशीन सेटअप करने में तकरीबन 35-40 हज़ार के आसपास लगा था हमको,
1: हाँ
0: 1,000 मोल्ड के साथ।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ, मोल्ड के साथ फिर जो भी मशीन है उसको सेटअप करना है,
0: हाँ
1: लगाना है।
0: कंप्लीट सेटअप मतलब समथिंग 40,000 मान के चलिए।
1: हाँ,
0: हाँ
1: कहे कि एक निश्चित अस्थायी रूप से उसको सेट करना होगा, ढलाई करना होगा, नट बोल्ट सब कुछ कटना होगा, स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ उसमें फिट करना होगा ना,
0: हाँ
1: तो
0: इलेक्ट्रिक से चलता है
1: इलेक्ट्रिक
0: मशीन।
1: से चलती है तो सिर्फ, तो जब इलेक्ट्रिक रहेगी उसी समय आप काम कर सकते हैं।
0: नहीं, उसके बाद अगले इलेक्ट्रिक कट जाएगी तो फिर एक जनरेटर भी है मेरे पास,
1: अच्छा,
0: है ना, तो जनरेटर चालू करके चला लेते
1: हाँ
0: हैं।
1: इमरजेंसी में कभी
0: हाँ
1: अगर बिजली
0: इमरजेंसी
1: नहीं
0: में,
1: रही तो इस तरह का।
0: हाँ एक आध घंटा चलाने में कोई दिक्कत नहीं है
1: हाँ
0: और ना ही उसमें कुछ हानि है।
1: सही बात है। तो इस काम में सिर्फ अकेले आप बना रहे हैं, मोल्ड से निकाल रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति परिवार वाले भी साथ देते होंगे
0: हाँ
1: ना?
0: परिवार वाले साथ देते हैं तभी हो पाता है, अकेले
1: हाँ
0: का काम मिट्टी का काम अकेले में नहीं
1: नहीं
0: हो
1: हो
0: पाता
1: पाएगा,
0: है।
1: सही बात है।
0: हाँ क्या कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत उतना भी मेहनत नहीं है जितना सोचते हैं,
1: हाँ
0: खाली करने में ही जो लगता है कि हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है,
1: हाँ
0: बस करते
1: तो
0: करते एक बार हैबिट हो जाने के बाद नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है।
1: सही बात है। हाँ एक
0: हाँ
1: बार करने के बाद तो एक बार कर का अनुभव हो जाता है और जानकारी हो जाती है तो फिर काम आसान भी लगता है और आदत भी बन जाता है बनाते बनाते। तो इस सब सुखाने में क्या सीधे धूप में देते हैं, फिर कोई फटता भी है फिर चटक जाता है, इस तरह का तो नहीं?
0: देखिए मिट्टी का चीज़ है तो एक कुछ ना कुछ तो होता ही है, एक आध गो खराब 1,000 में होता ही है,
1: हाँ
0: सब में नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: तो फिर एक दिन मतलब क्या 10 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं मोल्ड में, 10 से 15 मिनट तक अगर ज़्यादा धूप रहेगा तो 10 मिनट में निकल जाता है मोल्ड
1: अच्छा
0: से,
1: अच्छा हाँ
0: फिर उसको निकाल के धूप में सुखा देते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं फटता है भी नहीं और
1: हाँ
0: ना कुछ होता है।
1: अच्छा, इस तरह का ये जो बड़ा सा रेक जैसा बना है तो इसमें अलग
0: हाँ
1: अलग लेयर में आप उसको मैंने धीरे धीरे सूखने के लिए मैंने इस तरह का रेक जैसा बना दिया है?
0: जैसे मशीन से हम बना के निकालते हैं ना, तो जमीन में रखने

0: से फिर दिक्कत क्या है,
1: हाँ एक
0: गांव
1: तो
0: गांव
1: प्लेन
0: देहात
1: जगह
0: में।
1: होना चाहिए, समतल जगह होना चाहिए।
0: दूसरी बात क्या है, गांव देहात में मुर्गा मुर्गी
1: हाँ
0: गाय
1: इधर उधर
0: बकरी
1: दौड़ते
0: सब
1: रहते हैं,
0: दौड़ते रहते, तो कहीं लात उत मार के गिरा देंगे तो
1: बेकार हो
0: नुकसान
1: जाएगा,
0: अपना ही
1: नुकसान
0: होगा।
1: होगा।
0: इसलिए एगो सेफ जगह बनाया मैंने, एक लोहा का रेक बनवा लिए हैं, उसमें एक बनाते जाते हैं रखते जाते हैं,
1: अच्छा
0: बनाते
1: अच्छा
0: जाते हैं
1: हाँ
0: रखते जाते
1: सुविधा
0: हैं,
1: होता है,
0: सुविधा होता है उसमें।
1: रखने में भी काफी सुविधा होता है, कतारों
0: हाँ
1: में रखते हैं इसको, अच्छी तरह
0: हाँ
1: से सजाने
0: देखने
1: में
0: भी
1: अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता
1: है।
0: है यही।
1: तो इसे रात में आप इसको फिर ढक के रखते होंगे, नहीं
0: हाँ
1: कहीं कहीं पे ओस
0: अभी
1: गिरता होगा।
0: छावनी नहीं किए हैं इसलिए अभी तो एक तिरपाल से ढक देते हैं,
1: हाँ।
0: नहीं तो एक छोटा सा शेड बना के उसके नीचे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा, हाँ
0: हाँ
1: तो ये बहुत अच्छी जानकारी हुई। और इसके साथ साथ देखते हैं कि आप समय के अनुसार या फिर कोई त्यौहार मौसम के अनुसार पूजा पाठ के अनुसार ये मूर्ति भी अभी जैसे कुछ बना रहे हैं और अभी काम चल ही रहा है इसका, तो ये सब भी ऐसे ही मैंने अपने जो सीनियर जो हैं मूर्तिकार उस लोग से साथ में रह करके सीख गए क्या?
0: हाँ एक चलिए देखते देखते ही हम तो सीख मिल गया। एक जगह गांव में हम लोग का दुर्गा मूर्ति का पूजा होता है, एक अंकल बनाते हैं वहाँ मूर्ति, तो साथ में उनका वो भी अकेले बनाते हैं, फिर हम भी सोचे हेल्प कर दें, एक गांव का मूर्ति बन रहा है तो थोड़ा हेल्प कर देने में कोई दिक्कत नहीं
1: हाँ,
0: है
1: सही बात है।
0: ना, एक तो कुम्हार है ही हम, मिट्टी के काम करने में कोई बोलेगा
1: नहीं
0: नहीं।
1: नहीं सही बात है।
0: फिर चाचा के साथ 1 साल खाली हेल्प किए थे हम, तो धीरे धीरे हमको आइडिया मिल गया क्या करना चाहिए मूर्ति में, क्या कैसे फटता है, कैसे पुआल बांधना पड़ता है
1: हाँ, ये सब एक बार
0: मिट्टी
1: हैंड
0: के।
1: फ्री होना
0: हाँ
1: चाहिए,
0: हाँ
1: प्रैक्टिकल होने से मैंने सारा अनुभव हो जाता है।
0: फिर हेड बनाने सीखे, उंगली कैसे लगाते हैं, धीरे धीरे आइडिया हो गया तो फिर हम खुद से ही बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ, सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा
0: हाँ हाँ
1: कहीं
0: हाँ
1: कहीं अपना हाथ सफाई के लिए करना ही पड़ता है,
0: हाँ
1: तब जाके आज पूरा जानकारी हो जाता है और करते करते अपने भी अनुभव हो जाता है बाद में।
0: हाँ धीरे धीरे वैसे ही आइडिया मिल गया तो फिर बनाने में अभी कोई दिक्कत नहीं होता
1: हाँ,
0: है।
1: तो लोग आते हैं देखते हैं तो फिर मैंने ऑर्डर भी करते
0: हाँ
1: होंगे
0: ऑर्डर
1: ना?
0: करते हैं, जैसे अभी सरस्वती पूजा का सीजन आ रहा है तो फिर अभी सरस्वती मूर्ति बना रहे हैं,
1: दूसरे पूजा में और दूसरा
0: और भी
1: मूर्ति।
0: विश्वकर्मा
1: हाँ
0: मूर्ति, दुर्गा मूर्ति,
1: अच्छा, मैं हर
0: मनस माँ
1: प्रकार का कर
0: मनसा
1: लेते हैं
0: मूर्ति,
1: आगे।
0: हाँ मूर्ति कोई भी मूर्ति रहे हम बना लेते हैं।
1: अच्छा, हाँ तो उसके लिए भी वही जैसा मिट्टी होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा अच्छा मिट्टी, चिकनी मिट्टी होना चाहिए
0: हाँ
1: ना?
0: चिकनी मिट्टी होना चाहिए, इसमें दो क्वालिटी का मिट्टी होता है,
1: अच्छा,
0: एक बलुआ मिट्टी होता है और एक चिकनी मिट्टी होता है,
1: हाँ
0: उसी को अलग अलग शेप में बना के हम लोग लेपाई करते हैं तब
1: अच्छा।
0: नहीं फटता है मूर्ति।
1: अच्छा, मौसम को देखते हुए जल्दी सूखे, अच्छा से बने और खराब ना हो, तो क्या ये पुआल के साथ साथ इसमें और मिट्टी में किस तरह का कोई मिलावट वगैरह भी करते हैं क्या?
0: हम लोग जो ये धान का जो
1: भूसी
0: भूसी
1: उसका।
0: होता है ना, हम लोग वही चीज़ मिला के फर्स्ट मिट्टी चढ़ाते हैं,
1: अच्छा,
0: है ना।
1: हाँ,
0: दूसरी मिट्टी हम लोग बलुआ मिट्टी में सन के साथ पाटसन जो होता है ना रुई, उसको छोटा छोटा पीस में एक एक 1.5 इंच में कटिंग करके
1: अच्छा,
0: मिट्टी को मिलाते हैं,
1: हाँ,
0: फिर उस मिट्टी में हम लोग चिकना करते हैं मूर्ति
1: अच्छा
0: को।
1: अच्छा हाँ, जो भी उसका शारीरिक जो
0: हाँ
1: बनावट है उसको
0: हाँ
1: करते
0: तो
1: हैं।
0: वो एक फटने नहीं देता है, जो पकड़
1: हाँ,
0: के रखता है।
1: जकड़ के रखता है और फटता भी नहीं है, और धीरे धीरे सूखने के बाद भी वो मैंने सही सलामत रहता है ना?
0: हाँ।
1: अच्छा,
0: ये बलुआ मिट्टी जो होता है वो जल्दी सूखता भी है, जल्दी भी काम होता है।
1: हाँ, तो ये मैंने बनाने के लिए आसपास में मिट्टी आपके क्षेत्र में ही मिल जाता
0: हाँ
1: है ना?
0: अगल बगल में मिल जाता है, हम लोग
1: अच्छा
0: बाहर
1: अच्छा
0: से मंगाना नहीं पड़ता है।
1: हाँ, तो जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत सारे युवा हैं जो करना चाहते हैं, आजकल आपके इस क्षेत्र में बहुत सारे जो पहले बुजुर्ग लोग करते थे अपना पुश्तैनी धंधा, चाहे वो घड़ा बनाने का हो, तवा बनाने का या फिर खपड़ा बनाने का, वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लोग अपना काम धंधा को छोड़ के फिर बहुत दूर दूर काम मैंने भाग रहे हैं, मैंने काम के तलाश में। आप क्या क्या सोचते हैं कि बाहर जाने से ज़्यादा कमाई होगा या फिर गांव घर में रह के अपने परिवार में रह के अच्छा रहेगा?
0: देखिए बाहर जा के मजदूरी करना सही बात है, लेकिन जो अपना काम होता है वो अपना ही होता है, ठीक
1: हाँ,
0: है।
1: सही बात है,
0: बाहर में जा के काम कीजिएगा,
1: और दूसरे के बंधन में रहना पड़ता है।
0: दूसरे के बंधन में रहना पड़ता है, प्लस क्या है आपको मजदूरी मिलता है वही 700-800 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपया मिलेगा, और क्या मिलेगा। अगर अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं मिट्टी के काम में, तो फिर एक दिन में आप 1000 से 2000 रुपया मिनिमम कमा सकते हैं, मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं
1: नहीं
0: है।
1: नहीं हाँ, मैंने
0: तो
1: स्वतंत्र रूप से जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, इसमें कोई
0: हाँ
1: बंधन भी नहीं
0: कोई
1: है।
0: बंधन भी नहीं है। अब मिट्टी के कूलर में ही कम से कम आप एक दिन में 1500 से 2000 पीस निकाल सकते हैं
1: अच्छा
0: इजीली।
1: अच्छा

0: एकदम 6 से 8 घंटा के बीच।
1: हाँ
0: तो
1: सही
0: फिर
1: बात
0: आप 2 रुपया के हिसाब से मार्केट में बेच रहे हैं तो कितना बेनिफिट हो रहा है।
1: है। हाँ काफी ज्यादा है।
0: इसमें इसमें ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगता है। पूंजी मिट्टी तो खरीदना ही
1: आसपास
0: पड़
1: में
0: रहा है,
1: मिलता
0: ठीक
1: है,
0: है, जो लगेगा लकड़ी में हम लोग पकाते हैं
1: पकाते
0: उसी में
1: हैं।
0: खाली इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना पैसा।
1: हाँ
0: आप 1,000 का लकड़ी खरीदेंगे तो उसमें आपका 10,000 पीस आपका कूलर पकेगा,
1: पकेगा, सही बात है।
0: तो इसमें नुकसान नहीं है।
1: नहीं नहीं
0: हम
1: है।
0: जितना भी सुरता भाई बंधु लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अगर
1: अपने
0: मिट्टी
1: गांव
0: के,
1: घर में
0: हाँ
1: रह करके ही अपना जो निजी, अपना जो जिसमें इच्छा है बनाने के लिए, चाहे
0: हाँ
1: मूर्तिकार
0: हाँ
1: हो या
0: हाँ
1: फिर कुल्हड़ बनाने
0: कोई
1: की
0: भी
1: हो,
0: कुल्हड़ ही नहीं, और भी
1: और भी
0: अभी
1: बहुत सारे
0: मटका हो
1: सामान है।
0: गया, हंडी हो गया, छोटा छोटा
1: हाँ
0: दिया हो गया, ये सब भी अभी मार्केट में बहुत डिमांड है।
1: बहुत
0: हम
1: डिमांड है, सही बात है।
0: तो इस काम को रुचि रखे, बनाए अपना।
1: अच्छा बहुत सारे युवा जो ऐसे भी हैं जो भोज वगैरह में, जैसे पत्तल का जो ये होता है प्लेट वगैरह बनता है, चाहे पत्ता का हो या फिर कागज का हो या फिर थर्माकोल का हो, तो ये सब भी मशीन लेकर काम शुरू करते हैं। तो आप मिट्टी से जुड़े ये सब को आप कैसे पसंद किए, मतलब इससे कोई बीमारी हो रहा है या फिर
0: हाँ,
1: प्रदूषण हो रहा है, क्या
0: ऐसे
1: सोच
0: बीमारी तो हो ही रहा है,
1: रहे?
0: क्या है कि प्रदूषण भी फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है तो फिर बीमारी भी जरूर होगा,
1: जरूर, सही बात
0: है ना। तो फिर मिट्टी का काम यह है कि एक कहावत है ना, मिट्टी से बने हैं तो एक दिन मिट्टी में ही
1: मिलना ही
0: मिलना ही
1: है,
0: है।
1: सही बात है। हाँ वो तो सही
0: तो
1: बात है।
0: इसी को ध्यान में रखते हुए
1: ये
0: हम,
1: प्राकृतिक चीज है और
0: प्राकृतिक
1: इसमें
0: चीज,
1: हमारा
0: इसमें
1: नुकसान
0: कोई
1: भी नहीं है।
0: नुकसान नहीं है, इसलिए हम इस चीज को हम इंटरेस्ट।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आपने हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, अपने रोजगार के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी, और इस जानकारी के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: तो इस मुलाकात के पश्चात पुनः हम लोकगीतों की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं प्यारा सा पंच प्रगणिया लोकगीत, सुभाष कोयरी एवं साथियों के स्वर में।

0: और इसी लोग
1: मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से बदले हुए उस वीडियो को फर्जी बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिलें मिलेंगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री और सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। प्रवण कुमार प्रकाश ने खूंटी जिले के 25वें उपविकास आयुक्त के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीडीसी आलोक शिकारी कच्छप से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीडीसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। गढ़वा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आम जनता को लू और तपती धूप से बचाने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिले भर में पानी की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हो आंकड़ा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अकड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम यू वाणी।

0: युवानी कार्यक्रम में आप सभी युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। श्रोताओं, युवानी केवल उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि ऊर्जा, उत्साह और सपनों का संगम है। यही युवा शक्ति समाज को नई दिशा देती है और राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाती है। युवानी कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं की प्रतिभा को पहचानना, उनके विचारों को मंच देना और उन्हें प्रेरित करना कि वे अपने सपनों को साकार करें। जब युवा जागरूक और सक्रिय होते हैं तभी समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है। सपनों को हकीकत में बदलने का साहस युवाओं के पास है। आज का युवा कल का भविष्य है। जोश और जुनून से ही नई दिशा मिलती है। जी हां श्रोताओं, युवानी कार्यक्रम में हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। युवानी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पर्यावरण और युवा।
1: स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है वन क्षेत्र पदाधिकारी शिव नारायण विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हम जानना चाहेंगे क्या कारण है जंगली जानवरों का जंगल छोड़कर मैदानी भागों, गांवों और शहरों तक आने की घटना अब ज़्यादा सुनने को मिलती है।
2: देखिए, मेरे विचार से हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वन्य जीव गाँव की ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो गांव ही जंगल की ओर जा रहे हैं। हम वनों का विनाश करके, वनों में अवैध अतिक्रमण करके गाँव बसते जा रहे हैं। मनुष्यों का प्रवेश दिनों दिन उत्तरोत्तर वन के अंदर बढ़ता जा रहा है। उनका मूवमेंट, उनकी आवाजाही की प्रक्रिया वनों के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रकृति का ह्रास हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है। वन अगर जहां हैं उनकी सघनता कम हो रही है, या अगर वन शहर के किनारे के क्षेत्र के हैं तो वो डिग्रेडेड हो रहे हैं, मतलब वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो एक तरह से जो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है वह बर्बाद हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। वन्य जीव जो हैं उनके आवास में, उनकी प्रकृति में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वो तनाव में आ जाते हैं। उस तनाव को वो झेल नहीं पाते।

0: जैसे उदाहरण स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ही अपने आवास स्थल अगर उसके अनुकूल नहीं है तो वह भी तनावग्रस्त रहता है, तनाव में रहता है और अपने अनुकूल उसको बनाना चाहता है। इसी तरह से प्रकृति में जो पेड़ पौधे, जल, झरना, वो प्राकृतिक आवास एक होता है जो विशेष प्रकार के वन्य जीवों के लिए उपयुक्त होता है। मानव के क्रियाकलाप के कारण इन जंगलों में वन कटते जा रहे हैं, उनकी सघनता कम होती जा रही है, जिसके कारण जंगल में जल धारण करने की शक्ति कम होती जा रही है। इसके फलस्वरूप झरने, नदी, नाले जो जंगल में मिलते हैं उनमें पानी की मात्रा या तो कम होती जा रही है या बहुत से झरने सूख चुके हैं, उनमें पानी का स्रोत समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनके ऊपर कैचमेंट एरिया जहां जल आगमन क्षेत्र उनका है वो पूरी तरह से निर्वनीकरण उसका कर दिया गया, वृक्ष काट दिए गए, जिसके कारण जल धारण की क्षमता कम हो गई। अब ऐसी अवस्था में दूसरी बात यह है कि बहुत से फलदार वृक्ष जो जंगलों में रहते हैं, जिन पर वन्य जीव अपना निर्वाह करते हैं, भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, वो वृक्ष भी काट दिए गए, तो इसके कारण उनका खाना समाप्त हो गया, पानी समाप्त हो गया। जब खाना पानी, जब शाकाहारी जीव कम होते हैं तो मांसाहारी जीवों का भी भोजन प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। अब एक तो उनके आवास में परिवर्तन हुआ, उसका तनाव
1: जी,
0: भूख और प्यास, ये सब मिलाकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे कि वन्य जीव गाँव की ओर आ जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। कभी कभार हम लोग सुनते हैं बाघ या तेंदुआ गांव में आ जाते हैं, मवेशियों का शिकार करते हैं, ये भूख के कारण अपने आते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी वन्य पशु अपने आवास को छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने आवास से बाहर नहीं जाना चाहता, खास करके तेंदुआ या बाघ। ये बहुत ये शर्मिले प्रवृत्ति के जानवर होने के कारण ये अपने निवास स्थान से बाहर या कहें कि मानव के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस, भूख के बस या प्यास के बस इनको मजबूरन जंगल से निकल के गांव में आना पड़ता है। वहां ये पालतू पशुओं का शिकार करते हैं और इसी अवस्था में मानवों को भी कभी कभार क्षति पहुंचाते हैं, जिससे मैन एनिमल माने मानव पशु विरोध की स्थिति पैदा होती है और दोनों के बीच में कहें कि संघर्ष उत्पन्न होती है, जिसमें दोनों तनाव में रहते हैं और दोनों तनाव में रहने के कारण पशु को भी हानि होती है, मानव को भी हानि होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम जंगल का, वनों का संवर्धन करें, वृक्षों को नहीं काटें, जल का संरक्षण करें, ताकि हमारे साथ साथ वन्य पशुओं को भी रहने का उचित वास स्थल मिले, उनके प्रकृति को संरक्षित करें ताकि वो अपने प्रकृति में ही रहें, मानव आबादी की तरफ आने की उनकी चेष्टा न हो, वे मजबूरी में आते।
1: हम देख रहे हैं कि पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, जब पक्षी खतरे में होंगे तो मानव भी खतरे से दूर नहीं होगा। वन्य जीवों व पक्षियों के लिए, पक्षियों के शिकार पर रोक लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पक्षी जो है या तो वन्य पक्षी हो जो शेड्यूल के अंतर्गत अधिसूचित हैं या मानव आबादी के क्षेत्र में रहने वाले पक्षी हैं, पक्षियों का मानव जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे घरों में या आप देखते होंगे, पहले गोरैया नाम का एक पक्षी काफ़ी रहता था, सुबह होने के साथ ही उसकी चहचहाट और कोलाहल से मन प्रसन्न हो जाता था, लेकिन आज की तिथि में वो गोरैया विलुप्त होती जा रही है। गोरैया अधिकतर तो अनाज ही खाते हैं, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रित होती थी, लेकिन अब गोरैया के नहीं रहने के चलते कीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज, गिद्ध जो मानव के लिए सफाई कर्मी, इस मानव समाज के सफाई कर्मी का कार्य करते थे, मरे हुए मवेशियों को खाकर वो उनके मरे हुए शरीर से जो दुर्गंध या हानिकारक गैस जो निकलती हैं वातावरण को विषाक्त करने से, प्रदूषण से बचाती थी, आज के डेट में वो गिद्ध जो हैं वो विलुप्त

0: समाज के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
1: आपके विचार से वन्य जीव व पक्षियों का मानव से क्या तालमेल है?
0: पक्षियों का मानव से तालमेल कि पक्षियों के रहने से ही मनुष्य का भी जीवन सुखमय और खुशहाल होगा। पक्षी बहुत तरह से मानव के खुशहाली में सहयोग करते हैं। ये कुछ पक्षी बहुत से फलों का परागण करते हैं, जैसे चमगादड़ जो है वो बहुत से फलों का परागण एक फल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष एक फूल से दूसरे फूल तक पराग को पहुंचाता है, जिससे फल बनने की प्रक्रिया होती है। इसी तरह से और भी जो पक्षी हैं वो इस तरह के कार्य में कुछ फल और बीजों के प्रकीर्णन में, मतलब बीज को खाकर और उसको दूसरे जगह फिर उसका अपने मल उत्सर्जन करते हैं, वहाँ उसको फैला देते हैं। इस तरह से बीजों को फैलाया जाता है। तो उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, गिद्ध जो है वो सफाई कर्मी का काम करते हैं, गोरैया जो है कीट पतंगों को नियंत्रित रखती हैं, उसी तरह से मैना एक पक्षी है जो खेतों में पाए जाने वाले कीड़ों को पतंगों को खाकर अपना पेट भरती है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या नियंत्रित रहती है, किसान को ज़्यादा हानि का सामना नहीं करना पड़ता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। इस तरह से किसान के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल है ये पक्षी, बहुत से पक्षी।
1: कुछ पक्षियों को लोग मनोरंजन के लिए भी पालते हैं,
0: ये तो मैं ये कहूँगा कि ये अमानवीय थोड़ा है। मानव को चाहिए, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि मानव की स्थिति इस धरती पर जीवों के बीच एक पिता तुल्य है। अपने आप को वो सर्वोपरि रख के बाकी जीवों पर, जैसे एक पिता दया करुणा और प्यार से अपने परिवार का अपने बच्चों का पालन करता है, उसी तरह से मनुष्य को भी चाहिए कि वह इन सब दया करुणा और प्यार अपने अंदर धारण करे और इन सभी जीवों के प्रति भी वही भावना व्यक्त करे और उनका संरक्षण एवं कल्याण करे, ताकि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि उनको भी इस धरती पर रहने का जीने का विचरने का बराबर का अधिकार है।
1: हम जानना चाहेंगे जीव कल्याण के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं।
0: इन जीवों के कल्याण के लिए जैसे बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे बहुत से एनजीओ के द्वारा, बहुत से स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा परित्यक्त जानवरों का की देखभाल की जाती है, जैसे घोड़ा गधा कुत्ता या पालतू जानवर। बहुत से लोग पालतू जानवर को रखते हैं और जब उनकी आयु अधिक हो जाती है, हम लोग तो यहाँ तक भी देखते हैं कि जो दूध देने वाले पशु हैं वो भी जब एक उम्र के बाद दूध देना बंद कर देते हैं, तो उनको भी मनुष्य परित्यक्त के रूप में इधर उधर विचरने के लिए छोड़ देते हैं और वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, उनका जीवन उस समय बहुत ही कष्टमय होता है। जैसे हाथी महावत हाथी को चलाता है, वो उनकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि वे सड़क पर और शोरगुल के बीच में विचरण करें। उनको कितना कष्ट होता होगा जब किसी शोरगुल भरे सड़क से वो गुजर रहा हो, आसपास बहुत से वाहनों का ध्वनि से उसका मन बेचैन हो, वो अपने आप को महावत के भय से ही कंट्रोल में रखता है। और ये जब सीमा टूट जाती है तो उसी समय कभी कभार ऐसी घटना देखने को मिलती है कि बहुत बड़े समुदाय के बीच में ढोल नगाड़ों की आवाज़ से कोई कोई हाथी पागल हो गया, या एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उस हाथी पशु को तो नुकसान होता ही है, उसके साथ साथ बहुत से आदमी घायल हो जाते हैं, उनका भी नुकसान होता है। इस तरह से जीव कल्याण के लिए इन सभी को हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी जीव हैं उनका जो प्राकृतिक आवास है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उन्हीं आवास में रखने की चेष्टा करें, उनके प्राकृतिक आवास को बदले नहीं। और जो पालतू जानवर हैं वो जब बीमार हो जाएं या उनकी आयु अधिक हो जाए तो उसी तरह का प्यार प्रदर्शन उनको करते रहें, उनका इलाज करें जैसा कि पहले वो करते थे। अब दूध देते समय तो उनकी देखभाल करना, खाना खिलाना, और दूध देने बंद करने के बाद उनको परित्यक्त कर देना। अगर थोड़ी धैर्य से शांति से इस विषय को अगर आप सोच

0: तो क्या नहीं महसूस होता है कि आदमी कितना स्वार्थी हो गया है? जब तक किसी से कुछ प्राप्त है उसको रखा, जो ही उसका स्वार्थ संपन्न हो गया, उससे कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रही, उसने उसको अपने उसके हाल पर छोड़ दिया, कष्ट भोग। जानवरों को होने वाले कष्ट को महसूस किया जाना चाहिए। मानव को, मनुष्य को, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि जो पशुओं को या जीवों को कष्ट हो रहा है उसको महसूस करे, तो निश्चित रूप से उसके प्रति उसको करुणा जगेगी, उसके प्रति दया भावना आएगी और इस तरह से उनका रक्षा हो सकेगा।
1: हम जानना चाहेंगे वन्य जीवों की कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं।
0: देखिए, चूंकि जंगल का दिन प्रतिदिन विनाश हो रहा है, इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते हैं जो कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे से बाहर हैं। मेरे विचार से जब तक जंगल वनों का संरक्षण पूरी तरह से नहीं होगा, हर एक प्रजाति वन्य जीव खतरे में है, ऐसा माना जाना चाहिए। फिर भी आप थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि वैसे वन्य जीव जो मानव की उपस्थिति को बर्दाश्त करने के आदि हो गए हैं
1: जी।
0: वे जीव थोड़ी देर के लिए सुरक्षित कहे जा सकते हैं। जैसे आप वनों के किनारे या वनों में रहने वाले बंदर, बंदर वन्य जीव है, लेकिन बंदर जो है वो मानवों के समीप निकटता को बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी।
0: उनके आवाजाही को एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं, उनसे उनमें मानव की उपस्थिति से उनमें वैसी उत्तेजना नहीं आती है जैसे कि किसी लेपर्ड में या किसी बाघ में आती है या किसी लोमड़ी में आती। अगर लोमड़ी हो या बाघ हो या लेपर्ड हो, अगर किसी पर हमला करता है तो दो ही स्थितियों, दो ही परिस्थिति में वन्य जीव किसी के ऊपर हमला करता है। पहला, या तो उसको किसी जीव से भय हो, मानव हो या कोई अन्य जीव। जब भय की स्थिति पैदा होती है तो वन्य पशु, वन्य जीव पहले हमला करके अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। दूसरी अवस्था, अगर वो भूख से व्याकुल हो, उसी स्थिति में दूसरे को हमला करके वो, तो इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि जो जीव मानव की उपस्थिति का अभ्यस्त हो चुका है और मानव भी जिस जीवों को हानि सीधे सीधे हानि नहीं पहुंचाता हो, वही जीव थोड़ी देर के लिए सुरक्षित।
1: आपके विचार से आज के युवा संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इस पर संदेश दें।
0: आज का युवा बहुत कुछ कर सकता और कर भी रहा है। आज का युवा जीव कल्याण के लिए बहुत से क्रियाकलाप में व्यस्त है, एनजीओ का संगठन हो चाहे किसी कोई भी माध्यम हो। हाँ, पहले के जो स्थिति है, पहले का जो समय है, आज का समय, दोनों में बहुत परिवर्तन है। आज जानकारी के आदान प्रदान करने का माध्यम सोशल साइट्स या इन सभी के चलते बहुत बढ़ गया है। आज का युवा बहुत एनर्जेटिक है, कुछ करना चाहता है। अगर इनको उचित संसाधन प्राप्त हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर सकता है। तो युवा बहुत उत्साहित होकर वनों के सुरक्षा के लिए आगे आते हैं।

0: एक और भेंट वार्ता सुनते हैं। युवा, कार्यकर्ता से।
1: ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और खास तौर पर हमारे समाज के लिए। तो आज हम ऐसे ही एक युवक से आपकी भेंट करवाएंगे जो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य को भी करके अपने घर को भी ठीक से चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहां से जुड़े हुए हैं।
2: जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी चाईबासा का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया अपने विषय में और हमारे द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जाता है उसके विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय हुआ, मैं जयप्रकाश गिरी मेरा पूरा नाम है
1: जी।
2: और मैं चाईबासा का ही निवासी हूँ और मैं अभी वर्तमान में हिंदू जागरण मंच झारखंड प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ
1: जी,
2: जो समाज के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करती है।
1: अच्छा, तो श्रोताओं आपने जाना कि जय जी शिक्षा के क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि
2: सबसे पहले आप अपने गुरु जो आपके जिनसे आप पढ़े हैं 10th और 12th उनसे एक बार जरूर सुझाव लें।
1: अच्छा।
2: इस क्षेत्र में आपको जानी चाहिए और मुझे लगता है कि एक गुरु ज्यादा अच्छा आपको गाइड कर सकता है। और मेरा व्यक्तिगत अगर बोला जाए तो आज जैसा नव भारत जिसका निर्माण हो रहा है तो उस चीज को देखते हुए अगर टेक्निकल में अगर आपकी इच्छा है तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जाएं
1: जी।
2: या अगर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में अगर इच्छा है तो उसमें जाएं। उसके अलावा भी बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पे आप जिस चीज को कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं
1: जी। तो युवा दोस्तों, करने का अर्थ यह है कि कहीं भी आप जाएं तो एक जो आपको गाइड कर सकता है सही से उनसे आप जरूर परामर्श लें और आगे बढ़ें। और हमको लगता है ऐसा कि अपने जीवन में एक लक्ष्य को तैयार करें,
2: शुरू करना चाहते हैं। गरीब बच्चों के बीच अपनी पाठशाला बहुत जल्द हमारी संस्था जो हिंदू जागरण मंच है वो खुलने जा रही है, जिसमें गरीब असहाय बच्चों को निशुल्क सेवा शिक्षा हफ्ता में 2 दिन हमारे संस्था के जो महिलाएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनके द्वारा दी जाएगी
1: जी। बहुत अच्छी बातें आपने कही और आपकी संस्था इतनी अच्छी कार्य कर रही है कि सभी को मदद मिलेगी।
2: बेनिफिट नहीं ले पाते हैं तो मैं उन ग्रामीण क्षेत्र के खास करके युवाओं से यही कहूंगा कि आप अपने जिला परिषद जो है उनसे संपर्क कीजिए।
1: अच्छा।
2: आप अपने जो मानकी मुंडा है उनसे संपर्क कीजिए और अपने लिए क्या योजना है, क्या स्कीम है, इसकी जानकारी आप वहां से लीजिए। अन्य तो आपका समी जो जो सामने आपका जो ब्लॉक पड़ता है वहाँ के अंचल पदाधिकारी से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं
1: जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों को जो आपकी नज़र में है, जो उन लोगों को पता नहीं है जो चल रहा है कार्यक्रम हमारे पश्चिमी सिंहभूम में?
2: अभी जैसे कि सरकार के द्वारा भी देख रहे हैं कि बहुत सारा कैंप लगा करके रोजगार से रिलेटेड लोगों को रोजगार देने की कार्य की जा रही है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के खास करके युवा साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप एक बार जानकारी लेकर के कहीं भी अगर इस तरह का कैंप लगता है तो उसका लाभ ले। और किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी है तो हमारे चाईबासा मुख्यालय DC ऑफिस में आकर के आप उन संबंधित विभाग से आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डर भय नहीं है
1: जी।
2: क्योंकि आपका हक बनता है सरकारी योजना के बारे में या किसी भी तरह का जानकारी लेने के लिए आपको वो सहायता जरूर करेंगे।
1: तो जय जी, अभी तक जितने आप कार्य किए हैं अभी तक आपको संतुष्टि मिली है, आगे और क्या करना चाहते हैं?
2: संतुष्टि तो अभी नहीं मिली है, अभी हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, खास करके हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है एक पिछड़ा जिला है, गरीबी से निचले स्तर पे है और खास करके यहाँ पे हमारे जो नवजात बच्चे हैं उनको लेकर के हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किया हुआ है जो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और हमारे मन में आया हुआ है कि अभी कुछ महीनों से या सालों से आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि बहुत ज्यादा सड़क दुर्घटना हो रही है
1: जी।
2: तो हमारे चाईबासा के माननीय विधायक एवं मंत्री दीपक बिरवा जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार हम लोगों को भी मौका दिया जाए रोड सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस के लिए और हमारे पास कुछ इनिशिएट आइडिया है जिसको जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ हद तक रोड एक्सीडेंट को भी हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर रोड एक्सीडेंट में हमारे युवा वर्ग, हमारे साथी को हम लोग खो रहे हैं। अभी जैसे कि मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं डूबते जा रहे हैं, तो आप सबों से निवेदन है कि आपका जो युवा अवस्था है इसको देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी गलत ट्रैक में जाकर के या किसी गलत संगत में जाकर के या ना किसी गलत नशे की लत में जाकर के अपना भविष्य के साथ अपने माँ बाप को भी परेशान ना करें, उनको भी तकलीफ ना दे, क्योंकि एक बच्चे को पाल पोस के बड़े करने में काफी समय लगता है।
1: जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: हम लोग के युवा साथी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और अपना जो मन करता वो करते हैं। तो आप सबों से निवेदन है, खास करके युवा वर्ग से जो टीन एजर्स हैं, कि कम से कम नशे से दूर रहें, और इस चीज से किसी को कोई किसी का कोई भला नहीं होगा, आपका शारीरिक नुकसान होगा और आपका परिवार का, आपके माँ पिताजी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उनको भी बहुत ज्यादा

0: परेशानी होगी, उनको भी तकलीफ होगी।
1: जी, और युवा दोस्तों मैं भी ये कहना चाहूंगी कि गाड़ी को बहुत तेज ना चलाएं और नशे की हालत में बिल्कुल ना चलाएं।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर थे जयप्रकाश गिरी और इनसे बातें कर रही थी छवि कुमारी। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारा आज का युवानी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस सम्पन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री दिए गए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक में वित्त और वाणिज्य कर विभाग के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी बैठक में जल संसाधन विभाग की संचालित योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने आज देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी।
9: कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी को वोटर इति बनाने का प्रयास करते मंसूबे को हम कामयाब नहीं। ममता बनर्जी जी इसी तरह से दौड़ती रही। कल डायमंड हार्बर मॉडल की तरह से फ्लॉप हुआ। आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा जो है पाल्टा का दर्द बाहर ले लिया। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास कर जेएमएम दोनों ने सुना।
8: गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है।
10: निगम की आज दूसरी बैठक निगम के सभागार में हुई। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथी प्रयास रहे।
8: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल लर्निंग और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

0: @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के सलगी चूल्हापानी में आज दामोदर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में आकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। राज्यपाल ने इलाके की पुरानी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने पर जोर दिया।
1: बल्कि जीवन दायिनी शक्ति है। दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए इस नदी के प्रति हमारी श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि इससे हमारा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी है।
0: केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित IIT ISM से IIT इंदौर भेजा गया है। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।
2: इसका मेन एम ये है कि डिफरेंट स्टेट को जाके उसका कल्चर के बारे में, उसका एक्टिविटी के बारे में झारखंड बच्चों को पता, एंड वो एक्वेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरमिक्सिंग इन द सोसाइटी। 50 बच्चे यहीं से जाए।
0: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। रमा खलखो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अब राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में 28 मई को बकरीद की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह अवकाश 27 मई को तय किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने खंडोली मोड़ से अपहृत तस्लीम अंसारी को 24 घंटे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने SIT गठित कर 5 अपहरणकर्ताओं को गाड़ी और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। डाल्टनगंज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने अब तक आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए राज्य के लिए कई कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस संपन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का

ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाने के लिए आज भी झारखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और शैक्षणिक कैलेंडर के सही तरीके से अनुपालन पर ध्यान देने को कहा। रांची के सीसीएल सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए चयनित 132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रांची में आयोजित रोजगार मेला में सबसे ज्यादा 103 नियुक्तियां रेलवे सेक्टर में मिली। इसके अलावा डाक विभाग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम समेत कुछ अन्य विभागों से जुड़ी नियुक्ति पत्र युवाओं को दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं पर देश ने विश्वास किया है, आगे चलकर इन्हें अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करना होगा।
2: आज 19वें साल में 51,000, मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है।
1: आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से रांची में गुरुदेव आनंद मूर्ति का 105वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
3: परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म दिवस 105वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से अभी तक जो है हम लोग उनका जन्म दिवस मनाए, अभी हमारा शोभा यात्रा निकला है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, तब नारायण सेवा होगा, नारायण सेवा के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा।
1: इस मौके पर संस्था के धर्म प्रचार सचिव विजयवर्धन ने बताया कि विश्व के 180 देश में गुरुदेव आनंद मूर्ति के सेवा कार्य और प्रचार प्रसार वर्तमान समय में चल रहे हैं।
4: आनंद मार्ग ग्लोबल संस्था है, ये 180 देशों में फैला हुआ है और इसको यूएनओ के द्वारा भी स्वायत्तता प्राप्त है और ये अपने सेवा क्षेत्र के लिए ही पूरे विश्व में माना जाता है आज गुरुदेव।
1: गौरतलब है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में गुरुदेव आनंद मूर्ति का जन्म हुआ था, जिसे संस्था की ओर से आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, अनीश, खरसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सुनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूउल्लाह फकीर, परवीनाशमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन, मीना पवन, दुर्गाई सेलू, जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, CR कुलकर्णी, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की खेड़िया घर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, जीपी कुमारी, जयमणि, जयंती, अल्पना, नवीन, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, खम्हरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, कुचाई ईचा हतु से गोलाराम लोबादा, लुद्री लोबादा, सुरती लोबादा, सोमनाथ लोबादा, पूर्णिमा लोबादा, लालमुनि लोबादा, बिंजना लोबादा, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वशीम नूरजहाँ, वलीउल्लाह नूरजहाँ, राजनंदगांव से याकूब आशमा, यूसुफ आशमा, इमरान आशमा, इरफान आशमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, डॉबली से बसंत सिंह चाना, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बूत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नाचे नागिन गली गली। इस फिल्म का गाना आवाज़ें साधना सरगम और नितिन मुकेश की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और यही सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। मोहल्डिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्राण प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान, सरोचौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नशीम बेगम, आयसा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोत्रा मुश्तवा खान, राउब भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप, छोटा नीमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब, राज पैलेस मऊनाथ, भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश, सोनी दूधनाथ, भारती, पारुल, पल्लवी, शैलजा, सोनी, रविदास मंदिर, हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, पिलिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, वीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह, अंशु एवं सरदार परिवार, आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां बेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

अगली पसंद आप सबों की है सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वशीम, आसमा वेलदार, अकरम आसमा।

अगली पसंद आप सबों की है, बड़ा निमरी चाईवासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, बड़ा बम्पो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, बनमाली बेसरा, अन्नू, सिद्धू कुमारी और पूजा, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बसंती भगत, मृणाल कांति भगत, चानी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष आनंद, गांव कोयड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा, जो जो कुड़मा से सुक्रम महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाई साई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली, चिगड़ू महतो, बड़ी बाजार चाईबासा से मोजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबीहा, बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं मोहम्मद रफी की।

श्रोता सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली पसंद आप सबों की। रेलवे रोड गंज डूंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सन्नी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारीकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजबीन तड़वी, तैमूर तड़वी एवं समस्त तड़वी परिवार। गांव खसावां गांव दलाईकेला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, गीता सोए, सीनीमाई सोए, सरिता सोए, तनुजा सोए, सारिका द्वारिका सोए, जोजो कुलमा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेबई से गुलाब दास, मानिकपुरी ददरेगी से भागवत वर्मा, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गाना आवाज़ है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

कार्यक्रम में अगली पसंद आप सबों की है। बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, आकांक्षा और अरब, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, महादेवघाट अमलेश्वर से रोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, दारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, भाटपारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मन महिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु, पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, महालीसाई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जैतंग वीरक, मीका वीरक, कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सफी खत्री, इद्रेश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, काशिफ मीना और हासिम मीना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खानदान, फिल्म का ये नगमा आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। फरमाइश करते हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कन्यादान का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की।

अगली फरमाइश है न्यू कॉलोनी नीमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला निर्मला देवी अर्चना राम खुशबू खुशी अभिषेक अनीश और मुन्ना की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन की बेटी। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं किशोर कुमार की, गीत लिखा है सावन कुमार ने, संगीत बेदपाल का है।

0: चुप रहते।
1: और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण को सुनीता देवी, उमा कुमारी, कीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, शुभम गोप, सुमित गोप, विकी गोप, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और आराध्या कुमारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कटी पतंग का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद है छत क्षमा करेंगे अगली फरमाइश है छत्तीसगढ़ भाटपाड़ा दत्तरीगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा, फिल्म का गाना आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

अगली फरमाइश है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दो बदन का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की।

अगली फरमाई से बड़ा नेमली चाईबासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार समित कुमार और शुभम कुमार की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अर्पण का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। महोल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, आयुष, अन्नु, तन्नु, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, गीतेश महतो। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म उस्तादों के उस्ताद। इस फिल्म का गाना आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली खराबी सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक

0: Cheetah. अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव

0: अपर्णा शर्मा ने बताया उर्वरक
1: असेसमेंट ऑफ इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
2: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे

0: स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशिया 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, अब आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign Ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu to take

0: हम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनाकिदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जमखाना क्लब के मेंबरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलकलांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ यलमेन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर NRajam को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के 22 वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है।
4: अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ

0: सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठजनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरेट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरेट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेन जेरेट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक OTP आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
0: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें OTP आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे OTP आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
0: जी,
1: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
0: और एक और सवाल आया है हमारा,
1: इसका पार्ट टू भी
0: ये है।

0: टू पे एनी चार्जेस के लिए कि क्या पेड है भुगतान देना पड़ेगा?
1: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा। पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
0: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
1: जी।
0: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
1: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है। तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
0: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
1: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
0: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांची का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
1: जी थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
1: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
0: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
1: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में

0: चौथी जानकारी आपको मिल सकती है, जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारी जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी,
0: जी, इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी।
1: ताकि लोगों को आसानी हो। और
0: जी,
1: जो
0: संजीवनी संजय
1: संजय
0: सूरी
1: सूरी
0: जी
1: जी
0: से।
1: और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है,
0: जी
1: तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो
1: जी
0: उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए।
1: चाहिए
0: तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जानना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं।

0: भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मैं श्रीपद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम।
0: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है, इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने भी प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4567-14567, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
3: जी। और जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पर भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही।
1: जी,
0: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी

0: इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में, और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल
1: मिल
0: जाएगी।
1: जाएगी जी। दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते
2: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और
1: जी
2: दिल्ली से बोल रही हूँ।
1: जी
2: मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम।
1: जी
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें आपके बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडरली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है, या जितने भी सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक
1: जी
0: माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी ये कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमाशंकर जी।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका सवाल। हाँ जी
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है, पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल
1: अगर उन्हें
0: रहे
1: का
0: हैं।
1: स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567
1: अच्छा,
0: में आपको स्मार्टफोन की भी
1: जरूरत
0: जरूरत नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश से जुड़े
0: मंत्रालय ने
1: जी राजेश नेमा जी। जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है, उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा

0: मनमुटाव रहता है, तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 1 4 5 6 7, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
1: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 1467 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा। हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
0: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
1: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए। तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों
0: जी
1: में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने
0: जी
1: चाहिए। तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के
0: युवा
1: लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है। तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
0: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है, योजना है?
1: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है, और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस।
0: जी
1: हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे।
0: जी
1: तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
0: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है गजल का, तो आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में गज़ल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग।

सुरों के रंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना है फिल्म मधुमती से, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म वक्त का ये नगमा, और आइए सुनते हैं हिमालय की गोद में। इस फिल्म का गाना आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अभी आपने सुना फिल्म मूल आजम का ये गाना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं निगाह फिल्म का ये नगमा सलमा आगा की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृह मंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: This is Akashwani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary